0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम करुणा जी के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको करुणा जी।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समापन करते हुए कहा कि आज के लिए लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वहीं पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगियाना वोमांग ने कहा, ये कोई उपहार नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ी की मानव पूंजी में किया गया एक निवेश है। बजट के बाद दिए गए अपने भाषण के दौरान उन्होंने बजट में शामिल उपायों का बचाव किया। सार्वजनिक ऋण बजट 2026-2027 की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। सरकार का अनुमान है कि जून 2026 के अंत तक ये 681.9 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जो कि जीडीपी का 87.8% होगा। मंत्रिपरिषद ने मेलरोज जेल में 9 दिसंबर को ओजी सेल्मो की मृत्यु के बाद गठित जांच आयोग की सिफारिशों का जायजा लिया। इस आयोग की पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश बल्कि इस आयोग की अध्यक्षता करने वाले पूर्व न्यायाधीश पुलाम शांगलिन ने की थी। जांच आयोग की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया और विदेश में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों तथा तटीय रडार चौकियों पर हमले किए। और अब मौसम की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे, देश में अस्थिरता रहेगी। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व एवं ऊंचाइयों पर जहां तहां बारिश हो सकती है। दिन के दौरान भी आसमान में बादल घिरे रहेंगे। पूर्व तथा सेंट्रल पार्टों पर जहां तहां बारिश होगी। कभी कभार मूसलाधार बारिश के साथ बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान

सही अल-बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, जब मेरा बंदा गुनाह का इरादा करता है तो जब तक वो उस पर अमल न करे उसका गुनाह न लिखो, अगर वो उस पर अमल कर ले तो एक गुनाह लिख लो, और अगर वो उसको मेरी वजह से छोड़ दे तो उसके लिए एक नेकी लिखो, और जब नेकी का इरादा करता है तो एक नेकी लिखो, और अगर वो उस पर अमल करे तो 10 गुनाह से 7 गुनाह तक लिख लो। बहवाला बुखारी शरीफ।

वसल्लम ने फरमाया, मौत की आरजू मत करो, अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बदकार हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर सको। सूरह अत-तौबा उर्दू तर्जुमा, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ मांगते हुए देखा, लेकिन न तो उसने अल्लाह की बुजुर्गी बयान की और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, तुमने जल्दबाजी की है। फिर उस आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह दुआ मांगो, उसे कबूल किया जाएगा, अल्लाह से जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बहवाला निसाई शरीफ। ऐ अल्लाह, इस इस्लामी साल को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत और अमनो अमान वाला बना दे, आमीन। सामीन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए यूसुफ़ सुबाची का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: Continuous music. RM3.
1: Toli Ragalu.

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं और M3 भक्ति में शक्ति भक्ति में शक्ति
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्रणाम नमस्कार। रेडियो मनोरंजन पर आपका हम स्वागत करते हैं और आज का हमारा कार्यक्रम भक्ति में शक्ति यहां पर शुरू करते हैं जिसमें हम आपका अभिवादन करते हैं। श्रोताओं आपके शनिवार की सुबह को भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए हम यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं शुभ आरंभ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के स्मरण के साथ।

आपने अभी सुना श्री गणेश जी की मधुर वंदना। गणपति बप्पा को हर मंगल कार्य से पहले याद किया जाता है क्योंकि वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और बुद्धि, विवेक और सफलता का वरदान देते हैं। आज शनिवार का पावन दिन है, इसलिए अब हम सुनेंगे शनिदेव की स्तुति। कहा जाता है कि सच्चाई, परिश्रम और न्याय के मार्ग पर चलने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है।

श्रोताओं, शनि स्तोत्रम के पवित्र शब्दों ने मन को गंभीरता और भक्ति से भर दिया है। शनि देव हमें जीवन में अनुशासन, धैर्य और कर्म का महत्व सिखाते हैं। अब इस भावना को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक विनम्र प्रार्थना।

श्रोता आप सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर, जिसे आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और मैं हूँ वेदिता। श्रोताओं, जब भी जीवन में संकट आते हैं, भक्त हनुमान जी का स्मरण हम करने लगते हैं, क्योंकि वे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की कृपा से भय दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ना है। आइए अब श्रवण करते हैं दिव्य हनुमान अष्टक।

हनुमान जी की महिमा का वर्णन करने वाला अष्टक सुनकर मन भक्ति रस में डूब गया है। और ये सब आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है भक्ति में शक्ति। विदिता की ओर से एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, इसलिए अब हम बढ़ते हैं महादेव की आराधना की ओर। भोलेनाथ जो सरल हृदय और करुणा के सागर है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं।

हर हर महादेव। शिव भक्ति की पवित्र धारा के बाद अब समय है जगत जननी माँ की स्तुति का। माँ दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करती हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं प्रसिद्ध स्तुति सर्वमंगल मांगलिये।

0: माँ की कृपा, महादेव का आशीर्वाद, हनुमान जी का बल, शनिदेव का न्याय और गणेश जी का मंगल आशीर्वाद आप सबके जीवन में सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, तो विदिता को अब आज्ञा दीजिए। आपका पूरा दिन शुभ, सफल और आनंदमय हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता।
1: Center, 95, 85, North.

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से करुणा जी आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी को नमस्कार सोमवार 29 जून को सेशल्स अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे करेगा इस अवसर पर चार दिनों तक विभिन्न समारोह का आयोजन किया गया है समारोहों में भाग लेने के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने कई मित्र देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर होंगे वे समारोहों की मुख्य अतिथि हैं मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनराम गुलाम भी शनिवार को सेशल्स पहुंचेंगे जहां वे भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे इसके अलावा अफ्रीकी संघ चीन और रूस के प्रतिनिधि भी समारोह में शरीक होंगे प्रधानमंत्री ने संसद में बजट पर हुई बहस का समाहार करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉ. नवीनराम गुलाम ने कहा कि वो उनकी चिंता एवं आशंका को अच्छी तरीके से समझते हैं उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं या फिर भविष्य में

0: गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। डॉक्टर नवीनराम गुलाम ने यह भी कहा कि जिस संकट की आशंका आज व्यक्त की जा रही है उसकी जड़ें पूर्व सरकार के कुछ फैसलों में निहित हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार 2019 के आम चुनावों के बाद वृद्धावस्था पेंशन को 9000 रुपये से बढ़ाकर 13000 रुपये कर दिया गया था, जबकि यह आगाह किया गया था कि ये कदम लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं होगा। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व एसएमई दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। विदेश में पाकिस्तान में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 आंकी गई। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीटवेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। टुकोलेन लोगेतो कन्वेंट स्ट्रीट ओकुले में 78 साल की 78 ईयर ओल्ड श्रीमती राजेश्वरी शिवगोविंद श्रीमती राजेश्वरी शिवगोविंद पैदाइश नाम बरम दयाल जो रेणुका से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी बेटी नंदिता शिवगोविंद के मकान टुकोलेन लोगेतो कन्वेंट स्ट्रीट ओकुले से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोसेलमा ओबन बाबू में 76 साल के 76 ईयर ओल्ड श्री हेमराज मांगा जो क्रिशन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान मोसेलमा ओबन बाम्बू से उठाकर दाह संस्कार के लिए मोटाई सैंपिया बाम्बू की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमिशन टुमोरो एट 11 AM। कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल की 67 ईयर ओल्ड श्री फोकराज मानिक जो अशोक से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थियात सपहर 3:30 बजे के भाई सुधीर मानिक के मकान कामपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए माखी जानी रोजवेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 3:30 PM। और पंजनाडन बल्कि खुटवायाल बिलियाबियास में 75 साल की 75 ईयर ओल्ड श्री रसन गम पंजनाडन जो सेल्वा से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 4 बजे की पत्नी श्रीमती रोजी पंजनाडन के मकान खुटवायाल बेलियाबियास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वाजी लोलीबिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:06 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: सभी दोस्तों को नमस्कार, हेलो, आदाब। वेल, शनिवार का दिन है, तारीख है 27 जून 2026 और यहाँ पर आपकी सखी हाजिर हो गई है आप लोगों का दिल बहलाने के लिए। ऑफ कोर्स पुराने नगमों से कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर, आप ही का फेवरेट चैनल है। अभी से लेकर 2 बजे तक अनीता के साथ

जरूर देना साथ इतनी सी है गुजारिश वेल दोस्तों संगीत ही जीवन का वह सहारा है जिसका आश्रय लेकर दुखी व्यक्ति खुश हो जाता है संगीत वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भावों को आसानी से व्यक्त कर पाता है और संगीत वह आसरा है जो बेसहारा को भी सहारा देता है तथा संगीत वह कड़ी है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है जी हाँ उसी भांति हम भी संगीत के माध्यम से जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर तो चलिए आपको एक ऐसी धुन सुनाते हैं जो आपके ऑफ कोर्स आपके दिल को आपके इस दिन को भी रंगीन बना देगा चलिए जमीन आसमान का गाना

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, व्हाट ए लवली सॉन्ग। और इस गाने के लिरिसिस्ट हैं अनजान जी, और अनजान जी का कि जो बोल हैं उनका क्या कहना। अनजान जी के बोल प्यार में डूबे इंसान की सोच को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। प्रेमियों को हमेशा लगता है कि दुनिया और प्यारी है, मौसम और सुहावना है, प्रकृति और आकर्षक है, और उनके आस पास सब कुछ जो है शानदार है, क्योंकि उनका साथ ही उनके साथ है। और इस गाने में अनीता राज और संजय दत्त भी यहाँ इसी भावना को जाहिर कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत गाना था। अब चलिए, यहाँ पर जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया, कितने सारे फ़ोन कॉल्स आए, तो थैंक यू इसके लिए। ऐसा लगता है कि आप लोग इस कार्यक्रम के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लव, योर फोन कॉल्स, योर मैसेजेस। और यहाँ पर जो है, कौन है यहाँ पर, नंदा जी पाई से हैं, और उनकी मांग है फिल्म हीरा पन्ना का गाना, और यही गाना चाहेगा पति दीपक के लिए। चार गोलाई का बातें, अविनाश, अभिषेक, अरविनी, आशील, नाती गुल्लू, अरवी, गणेश और पुनीता परिवार के लिए। तो चलिए, इस गाने को भी हम गुनगुनाते हैं किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 12:20 हो चुके हैं और क्या खूब किसी ने लिखा है कि प्यार का पैगाम आज तेरे नाम लिखा, मेरे ये दिल मेरा सब जहान आज तेरे नाम लिखा, अपना हर मुकाम चाहत का अंजाम आज तेरे नाम लिखा, तू ही मेरी जिंदगी तू ही मेरी बंदगी, मैंने अपना पूरा जीवन आज तेरे नाम लिखा। वाओ, और बेशक अपने चाहने वालों को, प्रियजनों को एक प्यारा सा पैगाम 5250-6200 पर या फिर 4028070 पर। और यहाँ पर शीला जी बनमिया से उन्होंने हमें फ़ोन किया था और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म अमन का गाना लता जी की सुरीली आवाज़ में, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं वाकवा के नंदलाल जी। नंदलाल जी, आशा करते हैं कि आप जो है सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, तो ऑफ कोर्स यह गाना आपके नाम, फिल्म अमन का गाना।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर जो हैं काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और गानों का आनंद ले रहे हैं। उसी प्रकार त्रियोले से कल्याणी जी साथ दे रही हैं। आपकी फरमाइश है, आप फिल्म

साजन बिना सुहागन का गाना सुनना चाह रही है और यही गाना जो आएगा जो है खासकर आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता हर्षना श्रेष्ठा नितिशा पति वीरेन है छोटा नाती जियांश है पूरे दुआऊ परिवार और साथ ही साथ पूरी एमबीसी टीम के लिए और सभी लिसनर्स के लिए थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए सुनते हैं एक बार मोहम्मद रफ़ी को।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों, आशा हम भी कर रहे हैं कि अपने गानों से हम आपके दिल जीत रहे हैं और घोंघुप से श्यामा जी जुड़ गई हैं और आप कहती है कि आप जो है स्वस्थ हैं और यहाँ पर फिल्म ताज का गाना सुनना चाह रही हैं, बोल हैं बांसुरिया फिर से बजा, और आप ये भी आद करती है कि हम भी जो हैं एक बांसुरी के समान हैं।

जो आप सबको अपनी मीठी मीठी वाणी से मंत्र मुग्ध कर देती हूँ मैं। तो थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए श्यामा जी। तो चलिए यह गाना आपके भाई राम प्रकाश जी के नाम, भाभी है नम्रता, नेफ्यूज हैं युधिष केशव, साथ ही साथ आपकी सखियाँ हैं वीना गामफुल और विश्वानी दुखी जी, और साथ ही साथ नंदिनी ओकलू जी हैं। तो आप सबके नाम यह गाना फिल्म ताज का गाना लता जी हेमंत कुमार जी की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, मौका से सुनीता जी, सुदेवी, क्षमा कीजिए, सुदेवी जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म जानवर का गाना, और यही गाना जाएगा पति राज के नाम, बच्चों के नाम तथा नाती नातिन के नाम। तो चलिए, मोहम्मद रफ़ी एक बार फिर से लाल छड़ी मैदान खड़ी है।

जी दोस्तों पंपलमूस से सचिन जी साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रहे हैं पूरा बर पश्चिम का गाना, बहुत ही प्यारा गाना है भारत का रहने वाला। तो चलिए यह गाना आपके नाम।

जी दोस्तों, गायत्री डी विच वैजे से साथ दे रही हैं और आपने फिल्म आंचल का गाना मांगा, लेकिन जो गाना मांगा वह नहीं है, लेकिन उसी फिल्म का एक दूसरा गाना हम आपके लिए भिजवा रहे हैं। ऑफ कोर्स गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम, उनकी बेटियां हैं गिरीशा मेधा, कठरबोर्न की बहन अमृता, उनकी बेटियाँ हैं नेहा, शीति, दिव्या, बेटे सुधीर, कमलेश, बहु सुधा है, और हमारे टीम के लिए और सभी सुनने वालों के लिए यह गाना आप लोगों के नाम। बहुत ही मिठास वाला गाना है, जरूर इसका आनंद लीजिएगा।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, पॉइंट अलास्का से सीता जी ने हमें फ़ोन किया और कह रही है कि आज आपकी बहन मीनू का जन्मदिन है, नहीं आज नहीं है, कल है, तो पूरे सुहाती परिवार, लक्ष्मण परिवार और राम भोजन परिवार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं और यहाँ बर्थडे वाला गाना आपके नाम, हैप्पी बर्थडे टू यू मीना जी।

Yes, जितने लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सो हैप्पी बर्थडे टू यू. और यहाँ पर माधुरी जी साथ दे रही हैं, आपकी फरमाइश है पुरानी फिल्म दाग का गाना, तो चलिए किशोर कुमार साहब को सुनते हैं.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी के साथ। आपको नमस्कार रजनी।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशेल्स की ओर प्रस्थान। वे सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशेल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अलावा इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन के रणनीति में SMEs और स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य नवाचारी और प्रतिस्पर्धी उद्यमों की एक नई पीढ़ी तैयार करना है जो रोजगार सृजित करें और आर्थिक विकास को गति दें। नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल नाडा की ओर से इस सप्ताह 3 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गई। खतरों का अनुमान और एडिक्शन पर पुलिस के साथ एक प्रशिक्षण सत्र के बाद कल एजेंसी मॉरिशनों की ओर गई। खासकर मॉरिशस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मुलाकात हुई देश के सामाजिक केंद्रों में। और आज दिन के 2 बजे एजेंसी की तरफ से प्लाजा रोजिल में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष से संबंधित लोग एवं एजेंसियों के लिए ये समझाया जा रहा है कि कार्य किस तरह चलाए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में, यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू है। उधर वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई।

0: 1300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढने का काम जारी रख रहे हैं। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: To Colin, Loreto Convent Street, Ukulimi, 78 साल की 78 years old की श्रीमती राजेश्वरी शिवगोबिन, श्रीमती राजेश्वरी शिवगोबिन पैदाशी नाम बरमदयाल जो रेणुका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज दिन के एक बजे उनकी बेटी श्रीमती नंदिता शिवगोबिन के घर तुकोलिन लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट ओखुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। स्कूल लेन पेची वैजी सैंपिया में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल आजाद गुदा जो आजाद नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के तीन बजे उनके मकान स्कूल लेन पेची वैजी सैंपिया से उठाकर दफनाने के लिए सैकोस्टॉस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सुहाना सफर।
5: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है अनीता के साथ और रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। वेल, हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है जो है यहाँ पर, जो है टाइम जो है बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहा है और 1:04 हुए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फरमाइशों की ओर। यहाँ पर वीना जी सेना से जुड़ गई है हमारे साथ और आप कहती है कि आप जो है अभी आश्रम के कार्यक्रम में जो है हाथ बता रहे है, पुण्य का काम कर रही है आप, तो जो फिल्म बेटी बेटा का गाना है आप पूरे नंदू परिवार के नाम डेडिकेट करना चाह रही है। साथ ही साथ आपकी प्यारी बहन गीता है तो उनके नाम भी यह गाना जाएगा और शातो दिवे नागे से हमेशा ज्योति जी साथ देती रहती है तो यह गाना जाएगा अश्नी रेखा सुरेखा और पूरे मधव परिवार के नाम।

फिकम फ्लक्स से अनीता जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं आपकी मीठी मीठी आवाज़ सुनकर आपको अच्छी लग रही है, थैंक यू इसके लिए जी। तो आपने फिल्म राख और चिंगारी का गाना मांगा है विशेषकर पति राज के लिए, बेटे अंकुश, अंतीश, बहुआ सीमा, मनीषा, पोती हिमेशा अध्या और पोते लद्दू गोपाल के नाम, साथ ही साथ सभी लिसनर्स और हमारी टीम के नाम, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए यह गाना आप सब के नाम।

दोस्तों, कहा गया है कि जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक और खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक देखते रहते हैं कि हम उस एक खुले दरवाजे को नहीं देख पाते हैं जो मात्र हमारे लिए खोल दिया गया है। जी दोस्तों, मोताय ब्लॉग से माया जी साथ दे रही है। यह अगला गाना खून भरी मांग का गाना जो है आपकी बेटी स्वीति वेदिका सेजर विकी के लिए है। तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, जीवन में अगर हम धैर्य रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो जीवन है, ये जो ज़िंदगी है, हंसते हंसते कट जाएगी। और यहाँ पर जो है एक प्यारा सा मैसेज आया है सीला जी ऑफ थ्वा बुजिक से, और आप कहती है कि आप एक प्यारा सा गाना अपने बेटे को डेडिकेट करना चाह रही हैं जो अभी इंग्लैंड में काम कर रही है, एंड यू आर मिसिंग हिम सो मच। आप कहती है कि आई विश आई कुड हग हिम, ही इज़ सो फार फ्रॉम मी। और ये तो माँ का प्यार होता है, ये जो माँ का प्यार होता है ये अपने बच्चों से अलग नहीं रह पाती है, लेकिन यहाँ पर काम की वजह से आपके बेटे आपसे दूर है तो आपको कहेंगे कुखाज। एंड वी नो दैट आपको दिल पर पत्थर रखकर बेटे को भेजना पड़ा, सो कुखाज टू यू मैम।

बहुत ही भावपूर्ण गाना था उषा मंगेशकर और आशा भोंसले जी की आवाज़ों में। और यहाँ पर प्रथानुसार अनीता जी मोदालबे से उन्होंने हमें एक छोटी सी कविता भेजी है और आप कहती हैं कि रिश्ते कभी पूरा पुराने नहीं होते, रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, चाहे कितनी भी दूरी आ जाए। कुछ लोग दिल में बस जाते हैं जैसे मंदिर में भगवान बस जाते हैं। ऑफ कोर्स दोस्तों, चाहे इत्तेफाक से चाहे एक मुलाकात से, कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं जो बहुत ही खास बन जाते हैं और जिनको भुलाया नहीं जा सकता। एंड अगला गाना आपकी फरमाइश है, फिल्म बेटी बेटे का गाना वंस अगेन, और यही गाना जाएगा। सभी दोस्तों के नाम करुणा है, अमृता है और कुछ खास दोस्तों के नाम, तो चलिए हम सुनते हैं यह गाना।

जी दोस्तों, ब्रह्मस्थान की उषा जी की फरमाइश पर फिल्म यादगार का गाना चल रहा है और यही गाना चाहेगा दीदी निर्मला, शोभा, मधुरी और भाभी रेशमा के नाम।

जी दोस्तों, लाल माची से सुनीता जी का फ़ोन आया और आप कहती हैं कि आपकी भतीजी वंदना की शादी हो रही है अभिषेक से, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी ओर से अर्थात मौसी सुनीता की ओर से, आपकी बहन अर्थात वंदना की माता सीमा की ओर से, पिता है कृतानंद की ओर से, भाई कपूर है, भाभी रेणुका, पूरे जो आता परिवार और बतन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को वंदना और अभिषेक। विशिंग यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ।

ये दिल बेकरार हुआ, तू कभी मेरे सामने तो आया नहीं, फिर भी न जाने क्यों तुझसे इतना मुझे प्यार हुआ। यस दोस्तों, अगला जो गाना जा रहा है वो है ऑफ कोर्स प्यारी अनु के नाम, हरीश जी की ओर से जो बबासन से साथ दे रहे हैं। तो आप दोनों के नाम सावन आया है।

जी दोस्तों, बेल्जियम से प्रकाशवती जी साथ दे रही है और आप कहती है कि बहुत ही गर्मी हो रही है, तो टेक केयर, पानी पीते रहिए। और आप की फरमाइश है फिल्म आदमी और इंसान का गाना, चलिए आपके नाम यह गाना।

0: का सफर
1: जी दोस्तों, घर ही इशारा कर रही है कि हमारे जाने का समय आ गया है। और जो अगला गाना, अंतिम गाना हम बजवा रहे हैं वो है संध्या जी की मांग पर, जो गुलाम से सुन रही है। साथ ही साथ यहाँ गाना जाएगा पति विनोद के नाम, नेहा है आकाश से जर, रैना निर्वय और हमारे लिए थैंक यू इसके लिए जी। और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है उनके नाम बबू अनंतवा हैं जी, कसरबोन से मुचिदा से राधा जी हैं, आशा जानू हैं, कोतेज से ललिता कुशल जी हैं, त्रियोले से। तो आप सब के नाम जिन लोगों ने साथ दिया और जिन्हें लाइन नहीं मिले हैं उन सब के नाम यहाँ अंतिम गाना जाता है। चंद्रानी जी, समय की कमी के कारण यह गाना भी आपके नाम जाता है। आप जो हैं सुन रही हैं अभी, थैंक यू इसके लिए। और हम कहेंगे आप सभी को थैंक यू, आपने साथ दिया। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सप्ताह, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार, श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशेल्स की ओर प्रस्थान। सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेने जा रही हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशेल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अलावा इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। रिश्ते वुमन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद कर दिया गया था, पिछले 22 मार्च को फिर से इसे खोला गया। आज यहाँ पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन है। महिलाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। नए उपकरण भी दान में दिए गए। और आज 27 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एसएमईज दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मकसद है रोजगार पैदा करना तथा आर्थिक विकास में छोटे एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट देश के आर्थिक परिवर्तन की रणनीति में एसएमईज को, स्टार्टअप्स को केंद्र में रखता है। सरकार का स्पष्ट मकसद है नवाचारी एवं प्रतिस्पर्धी उद्योगों की नई पीढ़ी तैयार करना, जो रोजगार पैदा करे और आर्थिक विकास को गतिशील बनाए। नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल नाडेक की ओर से आज दिन के 2 बजे से एजेंसी की तरफ से प्लाजा रोजिल में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष से संबंधित लोग एवं एजेंसियां एकत्र हो रहे हैं। समझाया जा रहा है कि किस तरह कार्य किए जा रहे हैं। विदेश समाचारों में, यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू, जबकि उत्तरी इलाके और जिलन के दक्षिणी प्रांत में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसमें कहा गया है कि ये उपाय कम से कम शनिवार तक लागू रहेंगे। वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई है। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने का प्रयास जारी रख रहे हैं। कई देशों एवं वैश्विक संगठनों ने समर्थन और मदद का वचन दिया है। और ऐसी भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर

0: और निकल गई। रिक्टर पैमाने पर पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। फिलहाल इस भूकंप से किसी बड़े जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। स्कूल लेन पिछे वैजी सैंपियर में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल आजाद कोदार, जनाब अब्दुल आजाद कोदार जो आजाद नाम से भी जाने जाते थे, का अंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के तीन बजे उनके मकान स्कूल लेन पिछे वैजी सैंपियर से उठाकर दफनाने के लिए सेकोस्टांस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। कपूर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री फोकराज मनिक जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे उनके भाई श्री सुधीर मनिक के घर कमपुर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3:30 PM। रोथ्रॉयल बेलेरी वेसेश में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रसमगुम पंजानादेन जो सिल्वा नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती रोजी पंजानादेन के घर रोथ्रॉयल बेलेरी वेसेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: इतिहास के झरोखों से
2: नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से आप जुड़ चुके होंगे हमारे साथ और फोन कॉल तो आपको पता ही है 4028070 है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटे। लेकिन एक बात है, इतिहास के पन्नों को यदि व्यक्ति पलटे ना तो वर्तमान के निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए हर पल इतिहास के पन्ने पलटने ही पड़ते हैं। तो देखिए ना, अभी इतना पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार भारत ने दिए और इसके लिए भी तो पन्ने पलटने पड़े। अचानक ही तो आप किसी को पकड़ के नहीं दे सकते हैं ना। यह तो हुआ भारत की बात। मॉरिशस में भी जब वर्षों तक कोई व्यक्ति समाज की सेवा या अपना योगदान या समाज परिवर्तन के लिए कार्य करता है, उसको वर्षों तक समाज भी देखता है, सरकारें भी देखती हैं, कमिटीज भी देखती हैं, तब जाके उसको डेकोरेशन होती है। तो इसी तरह से श्रोताओं, भारत में तो संगीत जगत के कुछ प्रमुख लोग जो इस बार पद्मश्री से नवाजे गए, उनकी चर्चा यदि रेडियो मॉरिशस से ना हो तो कुछ अधूरा ही रह जाएगा। और आज तो हम रेडियो मनोरंजन पर आपके साथ जुड़े हैं और रेडियो मनोरंजन पर जिन कलाकारों ने इतना हमारा मनोरंजन किया, जिन्होंने अपने जीवन के गोल्डन ईयर्स समाज को दे दिए, वो चाहे नाचने में, गाने में, एक्टिंग करने में, कलाकारी करने में, उनको कैसे रेडियो भुला सकता है। तो श्रोताओं, आज हम कुछ चयनित इन कलाकारों की चर्चा आपके साथ करेंगे और सुमी जी तो जुड़ ही चुकी हैं। उन लोगों को न तो इतिहास भुला सकेगा, न वर्तमान भुला सकेगा, न भविष्य उनको भुला सकेगा। ये ऐसे कलाकार हैं जो इतिहास के झरोखे से सदैव झांकते रहेंगे, अपनी कलाकारी, अपनी आवाज, अपनी एक्टिंग, अपने स्वभाव, अपने जीवन काल की गतिविधियों के कारण। तो चलिए सुमी जी को पकड़ते हैं कि वे किन किन को पकड़कर इतिहास की खिड़की तक ले आई हैं।
3: नमस्ते अलका जी, कैसी है आप?
2: मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आज तो हम पद्मश्री की बात कर रहे हैं, क्या बात है।
3: और हमारे श्रोता भी शायद इसमें काफी दिलचस्पी लेंगे। और खासकर हम पद्मश्री अवार्ड्स की बात करें तो इस वर्ष जो है ये अवार्ड्स दो भागों में दिए गए, एक तो जून महीने की 25 तारीख को और जून महीने की 23 तारीख को। और आज खासकर आपने जैसे कहा, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे नामों के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारे श्रोताओं की भी दिलचस्पी
2: है। जून का महीना तो वैसे भी संगीत दिवस, योग दिवस कलाकार से भरा हुआ है। तो ये पद्मश्री बड़े सही समय पर भारत सरकार ने कलाकारों को भी दिया। और आपको बता दें, केवल सिनेमा जगत ही नहीं, यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज

0: सेवा ऐसे अन्य क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार ने तो यहाँ यहाँ से लोगों को ढूंढा जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे।
1: आदिवासी बोलो, मतलब हाँ, क्यों, किस कोने
0: आदिवासी
1: में है, हाँ।
0: कोई एक 100 साल की महिला योग करती है, सिखाती है, उनको दिया उनको गया ढूंढ मतलब कर, हाँ। ये एक बहुत बड़ी, जिसे हम कहेंगे ना किसी सरकार की विशेषता है कि जैसे गणेश जी का चूहा कोने कोने से खबर ला के गणेश जी को देता है, ठीक ऐसे ही मोदी सरकार उन लोगों को ढूंढ कर पद्मश्री अवार्ड दे रही है जिनको कभी समाज सामने लेकर ही नहीं आया।
1: बिल्कुल, आज तो हम जैसे कि डिजिटल युग से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ। ऐसे लोग सालों से योगदान दे रहे हैं लेकिन डिजिटल युग के बारे में कुछ नहीं जानते,
0: और वे लोग अपनी प्रशंसा भी नहीं चाहते। जैसे उड़ीसा के एक कवि हैं हलधर नाग, उनको उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी हुई है 200 पृष्ठों की लगभग, उनको पूरी कंठस्थ है, और जब उनको बुलाया गया कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है तो कवि ने कहा, हलधर नाग जी ने, कि मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है, मैं दिल्ली कैसे पहुंचूंगा। आप सोचिए, इतने बड़े लेखक को, कवि को नवाजा गया, और वो भी उड़ीसा के एक गाँव का, और वे एक स्कूल में जो उनकी मेस है उसमें खिचड़ी बनाने का काम करते हैं। तो आप सोचिए, इसी तरह से एक आईपीएस ऑफिसर हैं, वे जब रिटायर हो गए हैं, देखिए पुलिस की सबसे ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए, लेकिन वे सड़कों की सफाई में लगे हुए हैं, चुपचाप कूड़ा रोज सुबह निकलते हैं, उठाते हैं, एक एक कोना साफ करें। उस व्यक्ति को भी सरकार ने पहचान लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी ढूंढ कर पुरस्कृत किया जा रहा है जो समाज की सेवा करने में चुपचाप लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बधाई की बात है, और इस बार तो 113 पद्मश्री मिले हैं, और वैसे तो पूरे पुरस्कार तो और भी ज्यादा हैं, और अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो ये भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। तो आज तो हम देखते हैं किन किन को हम पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो नामों की लिस्ट है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से ये पुरस्कार सबको मिले हैं, वह चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सिनेमा और खेल खिलाड़ियों को भी वे भूले नहीं
1: जी। ऐसे तो काफी जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है अपने योगदान के लिए, जैसे आपने कहा, लेकिन आज खासकर हम एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, मनोरंजन है ना, तो हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि आज किन किन पर हम बात करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करेंगे हम धर्मेंद्र जी से,
0: जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जब फिल्म देखते हैं, बड़ा हो छोटा हो, नया हो पुराना हो, सभी के दिल को उनकी एक्टिंग छूती है।
1: फिर हम बात करेंगे अलका याग्निक जी के बारे में, उन्हें कोई कौन है जो नहीं जानता है,
0: और दुख है बहुत कि इतनी सुंदर आवाज जो है वो अभी इतनी उम्र उनकी नहीं हुई, लेकिन गायन के क्षेत्र से विदा हो गई है, आवाज विदा हो गई है उनकी।
1: और फिर हम बात करेंगे आर माधवन के बारे में, जो हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ के जो है साउथ के फिल्मों में भी काफी प्रचलित है।
0: 3 Idiots सभी ने देखी,
1: बिल्कुल,
0: उसमें माधवन जी को सभी ने खूब सराहा, और अभी तो जो फिल्म निकली उनकी धुरंधर
1: जी,
0: उसमें तो उनकी एक्टिंग कमाल ही कर रही
1: है, बिल्कुल। चलिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, और फिर जो है प्रोग्राम में इन तीनों महारथियों के बारे में हम बात करें।
0: चलिए,
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मन।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों में अगर हम देखें, मरणोपरांत पद्मश्री जिनको मिला तो धर्मेंद्र जी हैं। अरे, उनको भुलाना कहाँ मुश्किल है। भुला भी सके तो नहीं भुला पाएंगे। सचमुच उनका प्यार, उनका रहने का अंदाज, और देखिए बच्चों के साथ जो प्यार है वो तो उनका एग्जाम्पल है। दोनों लड़के उनको इतना प्यार करते हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि लोग कहते हैं कि पिता ने ये किया, बॉलीवुड में ऐसा है वैसा है, लेकिन धर्मेंद्र के यहाँ पे दोनों बच्चों का पिता से प्यार, यहाँ तक कि हेमा जी की भी दोनों बेटियाँ धर्मेंद्र जी को प्यार करती हैं। तो आप देखिए उन संबंधों को कैसे जिंदा रखा, बनाए रखा, और अपने लड़कों की माँ के साथ भी पूरा रिश्ता उन्होंने निभाया। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं चरित्र की विशेषताएँ कि जो जिम्मेवारी ली उसे उन्होंने पूरा किया। धर्मेंद्र जी का नाम तो धर्म सिंह देओल था, लेकिन भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में वे थे। जैसे लोग देवानंद को याद करते हैं, दिलीप कुमार को, ऐसे ही धर्मेंद्र जी को भी

0: लोग कभी नहीं भुला पाएंगे और उनके बोलने में देखिए वो पंजाबीपन कितना सुंदर लगता है। उन्होंने हिंदी की फिल्में की लेकिन जहाँ पंजाबी के डायलॉग बने वहाँ मज़ा आ गया लोगों को, और वो उनकी क्योंकि मातृभाषा थी इसलिए वो एक जट वाला जो एक अंदाज था और उनका जैसे हम कह सकते हैं कि चौड़ा सीना, कंधे चौड़े, वो सब बहुत ही सुंदर हर एक को लगता था। और जैसे शोले जैसी मूवी तो उनकी इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने 16-16 बार देखी ये फिल्म, और उनको लोग ही मैन कहा करते थे,
1: बॉलीवुड का ही मैन।
0: हाँ, बॉलीवुड का ही मैन उनको कहते थे, जैसे अमिताभ जी को बादशाह कहा जाता है,
1: बिग बी कहा,
0: हाँ बिग बी उनको कहा जाता है, ठीक कैसे उनको
1: एंग्री यंग मैन।
0: तो जिन्होंने समाज को अपनी कला के माध्यम से, तो देखिए श्रोताओं, कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन कला के क्षेत्र में भी जो लोग देते हैं वो अपने आप में विशेष होता है। क्यों सुमिता
1: जी? हाँ बिल्कुल। और धर्मेंद्र जी की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कलर्ड फिल्मों का
0: एक लंबी यात्रा उन्होंने, बिल्कुल,
1: लगभग 60 के दशक में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वो अपनी डायलॉग डिलीवरी और एक्शन के लिए बहुत ही जाने जाते हैं।
0: जी बिल्कुल। और डायलॉग बड़े भावुकों के, कभी क्रोध में कभी प्यार में, तो उनका वो जो एक्टिंग का एक अंदाज लोगों ने उसको बहुत सराहा।
1: शोले फिल्म में उनका जो डायलॉग है बसंती, हाँ। या तो फिर वो टंकी पर चढ़ जाता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: लोगों के दिलों में जैसे
0: बिल्कुल
1: बसा हुआ
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और धर्मेंद्र जी के अपने परिवार की बात की, अपने आप में बहुत ही सराहनीय है, हाँ। जो अपनापन उनके परिवार में है, उन्होंने अपने बच्चों के साथ कितनी फिल्में की, जगला पगला दीवाना नंबर 1,
0: दोनों लड़के साथ में, बिल्कुल,
1: अपने जो फिल्म आई जिसमें उसके पूरा परिवार था।
0: और आप देखिए एक संस्कार वहाँ दिखते हैं, धर्मेंद्र जी या उनके बच्चों ने कभी भी हल्के रोल नहीं किए हैं, हमेशा उन्होंने फर्स्ट क्लास रोल किए हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं।
1: जी हाँ, चलिए यहाँ पर एक और गाने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और धर्मेंद्र जी की बात की है तो हमने अपने फिल्म की बात की, तो अपने फिल्म का ये गाना हो जाए जिसमें धर्मेंद्र जी तो नज़र आए ही थे, साथ में बॉबी देओल थे, सनी देओल भी थे, और पिता के जैसे दोनों बच्चों ने भी अपना फिल्मों में काफ़ी नाम बनाया है ना, काफ़ी पहचान बनाई। तो चलिए हो जाए ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के लिए।

0: इतिहास के झरोखों से
1: चलिए इतिहास के झरोखों से आज हम जो है इस महीने अगर हम फिल्मी जगत की बात करें तो तीन बड़े बड़े कलाकारों को पद्मश्री से नवाजा गया, उनमें धर्मेंद्र जी है। और धर्मेंद्र जी के अवार्ड्स की यदि हम बात करें तो अपने करियर के दौरान इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। फिल्म फेयर की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया,
2: बहुत बड़ा अवार्ड था
1: जी। और वहीं पर ऑलरेडी 2012 में अलका जी, इन्हें पद्म भूषण मिल चुका था।
2: हाँ, एक बार फिर से मरणोपरांत
1: इन्हें अब जो मिला है वो है
2: पद्म विभूषण मिला। हाँ, इनको बिल्कुल
1: तो कहीं ना कहीं अपने आप में इतना इन्होंने काम किया है तो इनके काम को जो है
2: पूरे फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहे हुए
1: जी।
2: और हर बड़े छोटे सभी कलाकारों के
1: समय तक इन्होंने काम किया। इनकी जो आखिरी फिल्म जो अभी हाल ही में एक आई थी, मुझे अभी नाम नहीं याद, मैंने कुछ दिन पहले,
2: भागवत अमिताभ बच्चन जी की है
1: अभी हाल ही में,
2: जट यमला पगला में अपने दोनों बेटों के साथ, उसमें भी उनकी उम्र काफी दिख रही है,

0: लेकिन फिर भी उन्होंने खूब एक्टिंग की उसमें और मूवी काफी हिट रही उनकी। तो ये सारी विशेषताएं जो है इसी ने उनको अवार्ड के इस मुकाम तक पहुंचाया है।
1: बिल्कुल।
0: तो धर्मेंद्र जी को शायद भारतीय समाज क्या पूरे विश्व में ही उनकी फिल्में सराही जाती हैं और कई फिल्मों की डबिंग भी हुई है और लोग उनको देखना पसंद करते हैं। और विशेष रूप से उनकी जो एक्टिंग है ना बहुत सरल है
1: जी।
0: उनकी एक्टिंग में उतार चढ़ाव बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति वाले हैं, तो उसे हर कोई देखकर बड़ा खुश होता है। और बूढ़े लोग तो जिस समय घर हैं रिटायर हैं धर्मेंद्र की मूवी आए तो बहुत खुश होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और हमारे यहाँ के जो श्रोता है कहीं ना कहीं आए दिन उनके गानों की फरमाइश करते ही रहते हैं, है ना।
0: और सबसे बड़ी बात की
1: उनका एक बड़ा ही गाना पॉपुलर है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, जब भी बारिश होती है उस गाने की फरमाइश तो होती ही है।
0: तो इसका मतलब दिलों पर छाए हुए हैं
1: जी। बिल्कुल।
0: तो चलिए गाना एक सुनते और फिर हम बढ़ते हैं अलका जी की ओर।
1: जी हाँ, अलका
2: You're listening to RM3 Radio Mano

0: हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, लेते हैं उनको जरा। हेलो हेलो
1: हेलो आशा जी नमस्ते।
2: हेलो मैं राधा हूँ।
0: हाँ राधा बाल गोविंद जी बिल्कुल आप हैं। आवाज से पहचाना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जब आपने हेलो बोला मैंने कहा तो राधा जी हैं।
2: नहीं कोई बात नहीं। हाँ। आशा जी राधा जी सब तो हम एक ही हैं, कोई बात नहीं।
0: हाँ, सब कृष्ण की सखियां हैं।
2: हाँ, रेडियो के माध्यम से दो बन गए हैं ना
0: जी।
2: रेडियो के माध्यम से हम सभी दो सखी बन गए हैं।
0: अरे बहुत बढ़िया दोस्त है सब लोग।
2: हाँ क्योंकि हमने किसी को देखा नहीं है, हम सिर्फ रेडियो के माध्यम से एक दूसरे को जाने।
0: ये सच बात है, ये सच बात है। वाणी से दोस्त बन गए एक दूसरे के।
2: जी तो अब धर्मेंद्र जी के बारे में बोल रहे हैं ना।
0: जरूर हाँ बिल्कुल।
2: देखिए वो हमारे जमाने के बहुत मशहूर हीरो थे।
0: हाँ
2: क्योंकि हमारे जमाने के थे ना, तो उनकी हम लगभग फिल्में देखने जाते थे। हमारे घर के पास थिएटर था।
0: हाँ हाँ।
2: तो हम जाते थे हमेशा, जितनी भी उनकी फिल्में आती थी वो सिनेमा घर खचाखच भरा हुआ।
0: हाँ बल्कि मॉरिशस के सिनेमा घर तो खाली होते हैं।
2: हाँ लेकिन धर्मेंद्र की फिल्में जब आती थी तो उनकी जो उनके जो फैंस थे वो भर जाते थे। और उनकी देखिए उनकी जितनी भी वो कला दिखाते थे, उनका एक्शन या कुछ कुछ एक्शन वो सही अर्थों में वो स्वयं करते थे।
0: तो ही मैन उनको इसीलिए बोला जाता है ना,
2: डुप्लीकेट नहीं था। हाँ
0: बिल्कुल। हाँ,
2: पत्थर में वो पेड़ पर से रेल पर कूदना, आग में वो सच में जल गए थे।
0: अच्छा।
2: किसी बच्चे को बचाते हुए सचमुच वो जल गए थे शूटिंग में। ऐसे ऐसे कितनी शूटिंग उन्होंने की है जिसमें उनका मैं कहूँ की वो असलियत में करते थे।
0: हाँ।
2: और उनका वो अपना शरीर अभी तो जिम है ना दीदी।
0: हाँ।
2: लेकिन उस समय में वो जिम था नहीं, वो पंजाबी थे, गांव के लोग थे।
0: हाँ हाँ।
2: तो वो कुश्ती करते थे कुश्ती। और वो जाते थे वो अपनी अपना शरीर खुद उन लोगों ने अपने खाने पीने अपने कुश्ती के माध्यम से उसने अपना शरीर।
0: हाँ, ये सच बात है। उनके दोनों बच्चों का भी देखिए बॉडी बिल्डर की तरह से फर्स्ट क्लास शरीर है। तो इसका मतलब वो संस्कार मिले उनको ना।
2: हाँ हो सकता है उनके दादे पर दादे ऐसे।
0: हाँ, और मैंने तो पढ़ा कि धर्मेंद्र जी के दोनों बच्चे नाइट पार्टीज में भी नहीं जाते।

0: हैं, कहीं भी हाँ, जाते हैं फंक्शन वगैरह में, बस 10-11 बजे तक वापस अपने घर लौट आते हैं।
1: हाँ देखिए, ये बहुत अच्छे संस्कार है, क्योंकि ये किसे कहते हैं, वो अपने संस्कार को मार्फी तरह दिया हुआ संस्कार।
0: जी जी,
1: और वैसे वो धर्मेंद्र जी जब उत्तम अपने बेटे भी आगे है, जब वो आप देखेंगे उनके रोल, कितने रोल को आपको ऐसा लगता है कि वो हकीकत में ये कर निभा रहे हैं, उनका जाए लोग किसी को नहीं लगता है कि वो धर्मेंद्र है। मान लीजिए का नाम राज है मूवी में, तो सचमुच वो राज का किरदार है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही
1: हैं। हाँ, वो बहुत ही फेमस हीरो थे उस जमाने के, आज भी है। और जिन्हें उनके चाहने, खासकर उनके फूल पत्थर, वो मूवी तो कितने बार को वो हम सकते नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा है। ऐसी कई फिल्में हैं उनकी, और ऐसे लोग कभी ऐसे कैसे अमर हो जाते हैं, कभी
0: तो अमर ही हो गए, इतने पुरस्कार उनको मिले, और पुरस्कार तो समाज ने दिए, लेकिन जब उनकी फिल्म आती है आज भी दर्शक एकदम से जुड़ जाता है उनके साथ।
1: हाँ, कहते हैं ना, यदि आप कुछ प्रस्तुत करने जा रही हैं, आप तो एक्चुअल लेक्चर है, बहुत बड़ी है मुझसे,
0: नहीं
1: आप
0: नहीं
1: जब जाती है, अगर नहीं सुनिए, यदि समाज में आपने कुछ बोला, कुछ आया, यदि समाज ने आपके गाने सुनकर, आपकी कविता सुनकर आपको सम्मान दिया, तालियां बजी, तो यही
0: सचमुच। और कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज में विचार शक्ति पैदा करते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। बिल्कुल, अच्छे कलाकार कुछ संदेश छोड़कर जाते हैं।
1: हाँ, ये भी फिल्म के माध्यम से इन लोगों ने, किसे कहूँ मैं, साहित्य के ओर से संसार जो दुनिया, इन लोगों ने कुछ ना कुछ वो देकर गए हैं।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। राधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद
2: आपको। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए, अगर 4028070 है नंबर हमारा, और हमारे श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सिर्फ हम धर्मेंद्र जी पर नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि अलका याग्निक जी और आर माधवन पर भी बात करेंगे। उन्हें जो है यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सभी अवार्ड से जो है नवाजा गया है। एक और श्रोता से हम मिलते हैं।
0: हेलो,
3: नमस्ते
0: आशा जी, नमस्ते। चलिए, कैसी हैं?
2: गलती से हमने आशा जी का नाम लिया था, आशा जी रह नहीं पाई है ना आशा जी। ऐसे आशा जी हमेशा भाग लेती है, इसमें कोई ये नहीं है,
0: और कविताएं खूब लिखती हैं।
3: क्योंकि यह कार्यक्रम ऐसा है कि मैं अपने कुरत में रोक नहीं पाती हूँ, कि इसमें ज्ञान का भंडार तो है ही, मनोरंजन भी।
0: हाँ, ये रेडियो मनोरंजन है, बिल्कुल
3: है। और भला हम कलाकारों के बारे में बात करते हैं
0: जी,
3: तो ऐसे जानकारियाँ भी मिल जाती हैं जो हमें उनको चाहते हैं, पर हमें पता, हम नहीं जान पाते हैं कि हाँ उनके साथ ये भी हुआ है। अब अगर आपके विषय अनुसार मैं कुछ कहूँ तो ये भी कह सकती हूँ। देखिए, पद्मश्री अवार्ड, ये महान अवार्ड, इसे पाने के लिए इसकी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, कलाकारों ने की है। जैसे कि अगर मैं धर्मेंद्र जी के बारे में बात करूँ, तो भले इस दुनिया में नहीं है, पर आज उनको इतने बड़े अवार्ड सम्मानित किया गया है
0: जी।
3: इसे कहते हैं ना कि नाम गुम जाएगा पर ठहरा रह जाएगा, यानी कि वो हले चले जाते हैं पर उनकी याद वो सबके दिलों में राज करती है।
0: हाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं,
3: कहाँ चले जाते हैं, पर वो जाकर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो युगों।
0: हाँ, लेकिन यादें रहती हैं, बिल्कुल। उनका उनके काम में इतना दम होता है कि इतिहास के पन्ने उसको मिटा नहीं पाते हैं
3: जी। और मैं अलका याग्निक के बारे में
0: जरूर बोलिए।
3: वो जैसे कि 90s के दौर में एक बहुत मशहूर
0: गायिका, गायिका
3: सुरों की मलिका कहलाती
0: जी जी बिल्कुल।
3: आपके जमाने में लता जी, आशा जी,
0: हाँ, बल्कि लोग तो सोचते थे दूसरी लता जी देश को मिल गई है, लेकिन बहुत अफसोस कि उनको तकलीफ एक ऐसी हो गई है कि उनकी हेयरिंग की प्रॉब्लम बढ़ गई है उनकी, तो अब गाना जैसे एक तरह से उनको छोड़ना पड़ा कहेंगे।
3: जी, अगर अभी अगर ये घटना के साथ नहीं होती, तो आज जैसे लगता है आशा जी बड़ी उम्र के बाद भी वो गाना गाती थी
0: जी जी,
3: अलका जी भी बराबर गाती और आवाज से हम वंचित।
0: और अलका जी ने तो 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए हैं मतलब छोटी उम्र में इतना गा दिया उन्होंने
2: जी
0: कि फिल्म जगत क्या, गाने वाले क्या, समाज उनको भुला नहीं सकेगा।
2: तो चलिए आशा जी, बहुत बहुत

0: धन्यवाद, आपने फोन किया हमें, दोबारा आपसे मिलेंगे। नमस्कार। तो चलिए आशा जी किससे बात हो गई, अब अलका जी के बारे में बात करेंगे। अलका जी, आप अलका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: चलिए जरा पहले इतिहास में जाएं।
0: जी,
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मन।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: और अब बढ़ते हैं, सुमी ने कहा कि अलका अलका के बारे में बोले। अलका तो बहुत नाचीज है और अलका याग्निक तो पूछिए ही मत, बहुत दिल से सलाम। लेकिन बहुत दुख भी होता है कि एक अच्छी कलाकार न जाने कैसे एक बीमारी का शिकार हुई हैं कि वे आगे नहीं गा पा रही हैं, क्योंकि उनकी हियरिंग पावर जो है उसको कहीं डैमेज वो हुई है। लेकिन फिर भी इतना उन्होंने गाया, टिप टिप बरसा पानी, परदेसी परदेसी, छम्मा छम्मा, एक दो तीन, चांद छुपा बादल में, कि ये गाने हम भुला नहीं पाते और अपने किसी भी कार्यक्रम में, यहाँ तक कि अकेले बैठे हों तो भी सुनना पसंद करते हैं। बहुत खुशी हुई कि भारत सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया, वे इसकी हकदार भी थी। इतनी सुंदर आवाज़ और इतना योगदान, और नई पीढ़ी के लिए वे एक आदर्श बनी। कितने ही बच्चों ने उनके गानों को कॉम्पिटिशन्स में गाया और वे सराहे गए, और आज लोग उनके गानों को अकेले हों, दुकेले हों, समाज में हों, इकट्ठे बैठे हों, सुनना कितना पसंद करते हैं।
2: बिल्कुल। और अलका जी के बारे में बात करें तो 4 दशक से भी पहले अपने करियर में उन्होंने लगभग 700 से भी कुछ ज़्यादा गाने गाए हैं। महज 6 साल की उम्र से जो है उन्होंने रेडियो पर गाना गाना शुरू किया था।
1: जो बचपन की कलाकार है वो,
2: जी,
1: चाइल्डहुड जिसे कहते हैं ना, आर्टिस्ट वो है
2: जी। और पहले के गायकों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो पुराने अपने जो सीनियर्स रहे हैं उनसे बहुत सीखते थे।
1: हाँ,
2: तो
1: और
2: कहीं ना कहीं
1: लता जी
2: शायद ने काफी इनको इंस्पायर किया था।
1: इंस्पायर किया सभी को, और एक लंबा करियर उनका था
2: जी। उन्होंने 700 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, और अपने दौर के सभी बड़े बड़े गायकों के साथ, कुमार सानू कहे, उदित नारायण कहे, सभी के साथ इन्होंने गाने गाए हैं। और इन्होंने काफी अवार्ड्स भी अपने करियर के दौरान जीते हैं। अभी जो हमने एक गाना चलाया था अलका जी, घूंघट की आर्ट से दिलबर का, इस गाने के लिए इन्हें राष्ट्र पुरस्कार मिला था।
1: इतना लोगों ने सराहा ये गाना, हम है राही प्यार के फिल्म का गाना,
2: और वही कुछ कुछ होता है इस फिल्म के लिए भी जो है, इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के लिए भी जो है इन्हें राष्ट्र पुरस्कार से नवाजा गया था। अभी के लिए जो गाना हम चलाने वाले हैं, तेजाब फिल्म की आपने बात की तो 1 2 3, ये जो गाना है जो माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज्ड हुआ था, ये भी अब इनके करियर का एक बेहतरीन गानों में से एक है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।
1: इसी को ही सुनते हैं।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: जो है कला के लिए, गायकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, और एक अलग मतलब के फुफ मैं भी अटक
1: गई, भूल गई हूं माधवन जी की ओर, बड़ो वक्त बीत रहा है सुमिता जी, इतना बड़ा कलाकार, इतना प्यारा कलाकार, चाहे उसके जीवन की ओर देखें या फिल्मों में देखें, अरे थ्री इडियट्स में इतना बढ़िया उन्होंने रोल किया, और अभी धुरंधर तो समझो धुरंधर ही हो गई मूवी, तो सचमुच माधवन जी के पास वो साउथ इंडियन टच भी है एक्टिंग में, और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और परिवार भी उनका बड़ा प्यारा, और बच्चा तो उनका इस समय एथलीट्स में है, फिर अब इसमें खेल जगत में माना जाता है, तो श्रोताओं उनको भी पद्मश्री मिला है
0: जी। और वहीं माधवन जैसे आपने कहा हिंदी फिल्मों में तो अपना नाम बना ही चुके हैं, और साथ ही साउथ की फिल्मों में भी काफी नाम बना चुके हैं, इससे पहले वो टेलीविजन पर भी आया करते थे जहां पर वो काफी प्रचलित हुए थे 80 के सालों में, और ऐसे उन्होंने
1: जब वे डायलॉग बोलते हैं ना उसमें एक आनंद आता है सुनने में, उनका एक स्टाइल अलग है तो बहुत अच्छा लगता है उसमें।
0: चलिए इसी के साथ हमारा भी प्रोग्राम जो है वो खत्म होने को चला, ऐसा लगता है कि शायद इसे अगले सप्ताह हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं,
1: देखते हैं श्रोताओं
0: इतना कुछ
1: अगले सप्ताह हम किस चीज पर चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा।
0: तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इस वर्ष बॉलीवुड से जुड़े जिन कलाकारों को जो है पद्म अवार्ड दिया गया उन पर हमने बात की, 3 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो सवेरे हुआ उसी को आप दोबारा सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर। तो अलका जी को और मुझे आज के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: नमस्कार, शुभ दिन।
2: You're listening to RM3 Radio Manu-

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan.
2: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बजट पर अपने समिंग अप को पेश करते हुए कहा कि आज लिए गए फैसले देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि वे उनकी चिंताओं और आशंकाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मॉरिशस के सामने दो विकल्प हैं, या तो अभी नियंत्रित और आवश्यक सुधार लागू किए जाएं, या फिर भविष्य में गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़े। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशल्स के उपस्थान में सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे। मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। इसके अतिरिक्त इस दौरे के अंतर्गत डॉक्टर नवीन राम गुलाम अन्य कई महानुभावों के साथ भी मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे अपने मित्र और सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स के राज दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा से पहले जारी प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। रिश्ली वुमन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद किया गया था और पिछले कुछ महीनों से इसे फिर से खोल दिया गया है। आज यहां पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन रहा। महिलाओं को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इसके अलावा नए उपकरण भी दिए गए। आज रिफॉर्म पार्टी ने हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। कई विषयों पर चर्चा हुई, पब्लिक बीचेस, मैटरनिटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव आदि। पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया कि समुद्र तट अच्छा समय बिताने का एक स्थल है और ये सभी मॉरिशनों के लिए है। विदेश समाचारों में यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में और रिकॉर्ड तोड़ लू चल रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच नेदरलैंड्स ने पहली बार हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रेड अलर्ट देश के 12 प्रांतों में से 8 पर लागू है। और वेनेजुएला में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या कम से कम 920 तक पहुंच गई है। 3,300 से अधिक लोग घायल और अन्य कई लोग लापता बताए जाते हैं। राहत कर्मी जीवित बचे लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश जारी रख रहे हैं। कई देशों एवं वैश्विक संगठनों ने समर्थन और मदद का वचन दिया। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कंपूर स्ट्रीट नोवेल फ्रांस में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री फोकराज मनिक जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे

0: उनके भाई श्री सुधीर मानिक के घर कामपोरी स्ट्रीट नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मार जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रोत रॉयल बेले रिवे सेश में पचहत्तर साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रागा सागम पांजानादेन, श्री राजा रानसंगम पांजानादेन, श्री रानसंगम पांजानादेन जो सिल्वा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनकी पत्नी श्रीमती रोजी पांजानादेन के घर ओहोत रॉयल बेलेरिवे सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा इलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक मरुबेन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: प्रश्न जितने बढ़ रहे हैं घट रहे उतने जवाब, मैं सोचता हूं ओढ़लू ये नकाब। भीष्म साहनी जैसे भारतीय कवि द्वारा रचित ये कविता सुनकर चिंतन मनन करने के बाद ऐसे बहुत सारे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, खासकर नौजवानों के दिमाग में। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में दिल से शानदार स्वागत है। हमारा जो विषय है अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है और खासकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, खासकर मॉरिशियसीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सार्थक है। जब एक नौजवान मॉरिशस की धरती को छोड़ करके अन्य देश में जाकर के अपनी पढ़ाई कर रही है, तब जब वहां पर उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है, उन्हें क्यों वापस मॉरिशस में आकर के देश की आर्थिक व्यवस्था में गति लाने की दिशा में उन्हें काम करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर नंदिनी झुमक, नमस्ते डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है। फिर उसके बाद रक्षिता भुजावन, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं, नमस्ते और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोता गण और दर्शक गण, इस वक्त हम बात करने वाले हैं ऐसे दो नौजवानों के साथ जो एक अपनी पढ़ाई समाप्त करके वापस आ गई है मॉरिशस में, और जबकि रक्षिता भुजावन एक ऐसी नौजवान है, एक ऐसी युवती है जो फिलहाल अपनी पढ़ाई कर रही है। उन लोगों का थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं डॉक्टर नंदिनी झुमक, जो अपनी पढ़ाई की हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर भी एक मॉरिशन प्रतिनिधि बन करके उन्होंने लेक्चरर के रूप में यानी कि प्राध्यापिका के रूप में वहाँ पर उन्होंने काम किया। जबकि दूसरी ओर हमारे साथ रक्षिता भुजावन हैं, जहाँ पर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश वाराणसी में इस वक्त फ़िलहाल के लिए वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, बीए ऑनर्स हिंदी की पढ़ाई कर रही हैं और इस वक्त मॉरिशस में आकर की छुट्टियाँ मना रही हैं। तो दोनों आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर नंदिनी झुमक, मॉरिशस आने के बाद इतने सालों, कितने साल आपने अपनी पढ़ाई वहां पर की?
1: 8 साल।
0: बाप रे, काफी जबरदस्त है। 8 साल, तो आप हमें बताइए वहां पर बहुत सारी मतलब अनुभव यादें संजो करके यहाँ पर आए हैं, वापस आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है?
1: सबसे पहले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, 8 साल हो गए हैं भारत में। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता है कि 8 साल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि

0: बहुत सी यादें, बहुत सी अनुभवें मैंने प्राप्त की हैं, एक्सपीरियंस किया पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे भी. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिल से भारत सरकार की ओर से और मॉरिशस सरकार की ओर से बहुत आभावी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं भारत जाके मास्टर्स और पीएचडी कंप्लीट करूँ.
1: बहुत मतलब आभार प्रकट करते हो. और आप छुट्टी के लिए आए हैं रक्षिता, कैसा महसूस हो रहा है?
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मॉरिशस वापस आके अपने देश को वापस देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत महीने हो गए हैं जो मैं मॉरिशस नहीं आई, अपने माता पिता अपने दोस्तों से नहीं मिली. तो मैं बहुत खुश हूँ और वहाँ का दुनिया बहुत ही अलग है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलते हैं.
1: मॉरिशस आकर के आपने दाल पूरी, गातो पीमा, चना पूरी सब खा लिया है?
2: हाँ, सब खा लिया है. वो तो मेरे यादों में बसे रहते हैं, मेरे दिल में बसे रहते हैं.
1: बिल्कुल. और जब आप लोग भारत में अपनी पढ़ाई करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपको आप मिस करते हैं, खासकर मॉरिशस के समंदर, गातो पीमा, दाल पूरी,
0: जीवन शैली ही मिस करते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और जब आप मिस करते हैं तो आप वीडियो कॉल करते हैं अपने फैमिली के साथ?
2: जी जरूर, हम वीडियो कॉल रोज करते हैं. अगर नहीं भी करते हैं तो
1: बात करते हैं.
0: एक दिन भी नहीं हुआ कि हम लोग वीडियो कॉल पे नहीं होते.
2: नहीं होते.
1: पता है मेरे समय में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, तो हम लोगों को इस तरह का मौका नहीं मिलता था. हम लोग फोन करते थे, एक मिनट या दो मिनट पर ISD फोन जो होता है वो हम फोन करते थे. अब सबसे पहले आप हमें ये बताइए डॉक्टर नंदिनी झुमा, कि विदेश में पढ़ाई करते समय आपने कौन कौन सा जो कौशल हैं, जो स्किल्स हैं आपने अर्जित किया, एक्वायर किया है, और आप अगर आप दो तीन एग्जांपल्स दे सकेंगे?
0: तो भारत में मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कंप्लीट किया है. तो इनमें मैंने जनसंचार, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स मैंने डेवलप किया है. तो पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ मैंने पर्सनल डेवलपमेंट भी सीखा है बहुत.
1: आप किसी इंटरनेशनल मतलब संगठन एसोसिएशन में थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं?
0: तो अभी तक मैं नेशनल वाइस चेयरपर्सन हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ. हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बच्चों के साथ काम करते हैं जो भारत में आके पढ़ते हैं. तो इसमें मेरा जो रोल है, ड्यूटी है, मैं बच्चों को एक कंफर्टेबल सिचुएशन, एक जैसे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डालती हूँ. कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, एजुकेटिव एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें रक्षिता ने भी बहुत भाग लिया है, वो उसी में
2: भाग लिया है.
0: हाँ.
1: तो मतलब बहुत सारे जो विदेशी स्टूडेंट्स हैं, जब वे लोग भारत में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो एक तरह का एक उन लोगों का एक कल्चर शॉक होता है. तो उन लोगों को थोड़ा सा मतलब संभालने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए आप लोग इस तरह के काम कर रही हैं. तो इसमें मॉरिशन स्टूडेंट जब आते हैं भारत में, तो आप लोग किस तरह से उन लोगों की मदद करते हैं?
0: देखिए, मैं खुद मॉरिशन थी जब मेरा जैसे चयन हुआ था. तो मेरे लिए ही जब बाकी जितने भी मॉरिशन छात्र आते हैं भारत में, तो देखते हैं कि जो लीडरशिप पे बैठे हैं वो खुद मॉरिशन है. तो एकदम जैसे वो एट ईज माहौल बन जाता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ. अगर कुछ समस्या है, कुछ समस्या का समाधान ढूंढना है, तो उनको पता है कि नंदिनी बैठी हुई है. और अन्य बच्चों की बात अगर मैं करती हूँ, तो मॉरिशस में हम लोग हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, फ्रेंच में कंफर्टेबल है. तो जो अलग बच्चे होते हैं, तो ये लोग जानते हैं कि नंदिनी कंफर्टेबल है हिंदी में कुछ ट्रांसलेट करने के लिए. जो जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो मैं एक माध्यम बनती हूँ कि मैं बच्चों का जो स्टडीज़ हैं, एकेडमिक या कल्चरल जितने भी होते हैं ना, जब आप भारत जाते हो, पहले कल्चरल शॉक, फिर अपनापन होते हैं, तो मैं ये सब संभालती हूँ.
1: क्या बात है. और रक्षिता, जब आप वहाँ पर इस वक्त कितने साल हो गए हैं? जब
2: मेरी 2 साल हो गए हैं अभी. हाँ जी.
1: तो 2 साल में आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन से कौशल आपने अर्जित किया वहाँ से?
2: वहाँ पे मैंने दूसरों से संवाद करना सीखा, दूसरी भाषा में संवाद करना सीखा, और साथ ही घर को चलाने में मैंने बहुत से कौशल प्राप्त किया है. क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है.

0: अपने खर्चों की देखभाल करना पड़ता है, कैसे हम मैनेज करेंगे अपने टाइम मैनेजमेंट को,
1: अपने मतलब आपको एक स्टाइपेंड मिल जाता है तब उस स्टाइपेंड के हिसाब से आपको मतलब एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है।
0: जी जरूर। और हम अकेले भी नहीं रहते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ रहते, तो मिलजुल कर हमें एक टाइम प्लान करना चाहिए, एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि हम साथ में अच्छे से रह सके, और जहाँ भी जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे वहाँ की दुनिया होता है।
1: इस तरह से जी हाँ श्रोतागण और दर्शकगण, इस वक्त इस बात की पुष्टि हो रही है कि जब मॉरिशन छात्र अन्य देश में पढ़ाई करने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, वे लोग अर्जित करते हैं, खासकर घर मतलब वहाँ के अपार्टमेंट की सफाई करना, उसका रखरखाव रखना, मतलब बर्तन मांजना, कपड़ा धोना। और ये न केवल ये जो दोनों छात्र इस वक्त यहाँ पर आई हुई हैं, न केवल ये लोग बल्कि जो लोग अमेरिका में हैं, फ्रांस में हैं, यूके में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी एक उन लोगों की भी एक ऐसी जीवन शैली है जहां पर अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, वे लोग इससे जूझ रहे हैं। अब डॉक्टर नंदिनी, आप हमें ये बताइए कि जिन जिन कौशलों के बारे में आपने बात की है, जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, आपने अलग अलग जो कौशलों के बारे में आपने जिक्र किया है, आप हमें ये बताइए कि ये जो कौशल हैं, ये जो एडवांटेजेस हैं मॉरिशस के आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मॉरिशस में, इसके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है
2: आज के युग में? जैसे दोनों संचार और ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरा मानना है, और एक अच्छा संवाद, एक अच्छा जो शोध है, रिसर्च और नए विचार के साथ मैं मानती हूँ कि किसी भी देश में प्रगति हो सकती है। तो अगर ये माइंडसेट फिक्स हो जाते हैं कि आपके पास ये सब है जो मैंने मेंशन किया है, तभी एक देश में आर्थिक विकास होती है।
1: कहने का मतलब ये है कि ये खासकर आपने लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात की है। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा संक्षिप्त में, आप मुझे बताइए कि आपने अपनी पीएचडी की है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में, एग्जैक्टली किस टॉपिक को लेकर के आपने ट्रीट किया है?
2: जी, मैंने अपना जो टॉपिक था वो द पोर्ट्रेयल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया of the Indian indentured laborers with special reference with culture and Mauritius. तो इसमें मैंने दर्शाया है कि जो हमारी जो मॉरिशन मीडिया है उन्होंने जो हमारे जो गिरमितिया हैं जो भारत से आए हैं उनको कैसे दर्शाया है, जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, सिचुएशंस थी, जितने भी संघर्ष उन्होंने फेस किए हैं उस टाइम पे, तो मॉरिशन मीडिया ने उसको कैसे दर्शाया है, जनता को कैसे दिखाया है कि हमारे पूर्वज कैसे आए थे। अब मैंने क्या किया है, रिसर्च में मैंने दिखाया है कि जितने भी टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, रेडियो में जितने भी प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, इनमें से कौन कौन से विषय हैं जो इंडेंचर लेबरर्स, जो गिरमितिया से रिलेटेड हैं, तब जाके मैंने फिल्टर आउट किया और मैंने रिसर्च में दिखाया है कि इतने इतने नंबर्स आए, इतने इतने संख्या में रिसर्च हुए हैं। और मैंने दिखाया भी है कि हमारे जो मॉरिशन मीडिया है आजकल, अगर मैं एमबीसी की बात करूं या प्राइवेट चैनल की बात करूं, कितनी रिसर्च अभी तक बाकी है। हम लोगों को बहुत कुछ काम करना है, काम हुए हैं बहुत बहुत सारे, हुए आर्काइव्स में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे नए पैटर्न, नए इनोवेशंस चाहिए इस फील्ड में।
1: पता है डॉक्टर नंदिनी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की ओर से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, अलग अलग जो विषयों को लेकर के बात करते हैं हम लोग। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोगों तक पहुंचाना है, जागरूक कराना है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उसको एक अलग तरीके से, एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि फलाना ने ये किया, एक प्रोड्यूसर ने ये प्रोड्यूस किया, एक प्रोग्राम को प्रोड्यूस किया, और आप उसको लेकर के एक वैज्ञानिक तरीके से उसका अनुसंधान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे लोग, कहने का मतलब है जो

0: पत्रकार हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग एक काम कर लेते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न कि हम लोगों को कुछ मिलना है, लेकिन जब आप लोग हमारे लिए कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मतलब MBC की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। आप हमें बताइए रक्षिता भुजावन कि आपके जो कौशल, आपने मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात की है, वो किस प्रकार से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में गति लाने के लिए मददगार हो सकते हैं?
1: जैसे मैंने बात किया है टाइम मैनेजमेंट पर और बजट इन्वेस्टमेंट पर, वो हमारे टाइम मैनेजमेंट पर हमारे जीवन में हमें एक प्रोडक्टिविटी की ओर बढ़ाते हैं, उत्पादकता की ओर बढ़ाते हैं, हमें अपने जीवन पर कैसे अपने अपने समय को ब्रेक डाउन करना चाहिए ताकि हमें सफलता की ओर बढ़ा सके, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जैसे मैंने बजट के बारे में बताया है, तो बजट हमारे देश में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और हमारे घर में, हमारे घरेलू कार्यों में हमें मदद करते हैं कि हम कैसे अपने फाइनेंशियल को, अपनी सैलरी को मैनेज कर सके।
0: मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो छात्र अन्य देशों में या फिर यहाँ पर पाए जाने वाले जो छात्र जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में भी पढ़ाई कर रही हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको मार्जिनलाइज करेंगे, वे भी ऐसे बच्चे, क्योंकि यहाँ के जो मतलब जो छात्र मॉरिशस के विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अन्य विश्वविद्यालय जो मॉरिशस में पाए जाते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक मतलब एक सम ऑफ मनी दे देते हैं, तब वे उस पैसों को लेकर के वो मतलब कांच छांट करते हैं, चलिए इस पैसे को ट्यूशन के लिए रखेंगे, ये पैसे इसके लिए रखेंगे, उसके लिए रखेंगे, तो वे भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि छात्रों को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको अपना बजट करना चाहिए और ये बजट स्किल्स जो हैं उसको वे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जब वे लोग बड़े होंगे या फिर जब वे लोग एक घर का खर्च वहन करेंगे, मुझे लगता है। अब एक घर को चलाने के लिए इन कौशलों का होना आपको लगता है ज़रूरी है?
2: बिल्कुल, एक घर हो या देश हो, अगर दोनों अच्छे संवाद और सहयोग के साथ जैसे काम करते हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं और ये घर चलाने में ज़्यादा मजबूत बन जाता है, घर ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं, मेरा ये मानना है।
0: और आपके हिसाब से रक्षिता?
1: जी ज़रूर, अगर साथ में काम करते हैं और साथ में एक दूसरे की मदद करते हैं तो एक घर बहुत खुश रहते हैं और साथ में काम करने से लोग साथ में ही रहते हैं,
0: एक यूनिटी, एक एकता,
1: एक साथ।
0: अब डॉक्टर नंदिनी जुमक, आप हमें ये बताइए कि उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडीज पूरा कर लेने के बाद युवा जब स्वदेश लौटते हैं तो अक्सर एक रोल मॉडल बनते हैं अपने छोटों को मोटिवेट करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गाइडेंस भी देना शुरू करते हैं, मार्गदर्शन भी बन जाते हैं, क्योंकि आप एक सीनियर, खासकर अपने फैमिली, अपने अपने परिवार में आप एक सीनियर बन जाते हैं, एक रोल मॉडल बन जाते हैं, और आपके जो चाची हैं, जो मौसी हैं, जो मामी हैं, वो कहते हैं चलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर के पढ़ाई की, वो वापस आ गए, तुम भी अपनी पढ़ाई ठीक से करनी चाहिए, तुमको भी मौका मिलेगा विदेश जाने के लिए। तो आपके साथ ऐसी स्थिति हुई है?
2: हाँ हुई, अभी तक होता है, मुझे लगता है पूरी जिंदगी होगा। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने अनुभव से किसी को प्रेरित कर सकती हूँ।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जैसा आपने बोला रोल मॉडल, जब मैं भारत में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे जितने भी नीस हैं, नेफ्यूज हैं, कजिन्स हैं, भैया बहन हैं, ये लोग बहुत मानते थे मुझे कि अच्छा ये कुछ कर रही है भारत में, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव है परिवार का, तो मुझे एक जैसे एक रोल मॉडल की तरह देखती थी। अब जब आपके ऊपर ये प्रेशर आते हैं कि मैं रोल मॉडल हूँ, तो ये जैसे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा ही करना है, इससे आगे कुछ नहीं, अच्छा ही करना है,
0: डगमगाना नहीं है।
2: हाँ
0: बिल्कुल।
2: और जब मैं मॉरिशस वापस आई तब ये ज़्यादा प्रेशर मुझे फील हुआ अंदर से, अच्छा PhD कंप्लीट हो गया, अब बच्ची नहीं रही है, अब ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, तो ये चीज़ बहुत जैसे सत्य है इसमें, कुछ झूठ नहीं है कि लोग आपको बहुत

0: डिफरेंट नजरिए से देखते हैं. तो रोल मॉडल हम लोग हैं और ये जैसे इम्यून हो जाता है कि रहना ही है ऐसा. अगर ये स्थिति खराब हो जाते हैं तो हम लोग नजर नहीं मिला पाएंगे किसी से.
1: मतलब आपको अपना जो डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना पड़ता है. आपके साथ भी ऐसा ही होता है रक्षिता?
2: जी जरूर होता है. मेरे बहुत ऐसे कजिन्स हैं जो बहुत छोटे हैं और मेरे मामी उनको बोलते हैं कि उनको देखो वो भारत चले गए हैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको एक रोल मॉडल की तरह मानो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ. तो मेरे साथ भी बहुत ऐसे होता है और मुझे भी अपने जीवन में एक अनुशासित जीवन जीना है कि आगे भी उनको प्रेरित कर सकें ताकि वे आगे बढ़ें.
1: जी हाँ बिल्कुल, अनुशासन प्रियता ये एक मूल मंत्र है उन छात्रों के लिए जो इस वक्त उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस में हो या फिर मॉरिशस से बाहर. विदेश में तो और ज़्यादा वो अनुशासन प्रियता को बरकरार रखना पड़ता है क्योंकि आप खुद अपने माता पिता होते हैं. हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर से मिलेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्यों मॉरिशन युवाओं को फिर से वापस आकर के देश की अर्थव्यवस्था में गति लाना जरूरी है.

0: हमारे साथ ऐसे दो मेहमान हैं जहां पर एक अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर लेने के बाद वापस आ गए हैं और साथ ही साथ एक ऐसी शिष्या है जो इस वक्त अपनी पढ़ाई कर रही हैं। फिर से स्वागत किया जाता है आज की चर्चा कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं कि क्यों मॉरिशन नौजवानों को वापस आकर के देश के आर्थिक विकास में, देश को और ज़्यादा विकसित करने में उन लोगों का योगदान होना ज़रूरी है। न केवल विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र बल्कि मॉरिशस के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उन लोगों को क्यों मॉरिशस में ही रह करके अपने देश के विकास के लिए उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए और ऐसे ऐसे नवाचार विषय लेकर के आकर के अपने देश को और ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी जुमक हैं, साथ ही साथ रक्षिता भुजावन्ना, फिर से स्वागत किया जाता है आप दोनों का। आप हमें ये बताइए डॉक्टर नंदिनी, जो लोग विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं और जब वे लोग लौटते हैं तो देश के लिए एक एसेट बन जाते हैं, जो छात्र मॉरिशस की धरती में रहकर भी पढ़ाई करते हैं वे भी एक एसेट के लिए के रूप में भी देखने को मिलता है उन लोगों को, तो क्या आपको लगता है कि एक एसेट होने का पूरा फायदा उठाना ज़रूरी है?
1: जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर शिक्षित युवा एक देश के लिए एक अमूल्य संपत्ति होती है। ठीक है, जब हम लोग वापस आते हैं तो हम लोग ना केवल एकेडमिक स्किल्स को लेकर वापस आते हैं, हम लोग बहुत अनुभव लेकर आते हैं,
0: पूरे पैकेज के साथ,
1: होल पैकेज लेकर आते हैं। जब हम लोग अब आ गए हैं तब इसमें जो होता है कि अगर हम लोग देश की सेवा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र में उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तभी जाकर देश में प्रगति होती है। अब देश में यहाँ मॉरिशस में एक छोटा टापू है लेकिन अफ्रीकन हब में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मॉरिशस में बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत ऐसे काउंसिल है, अगर मैं मॉरिशस रिसर्च काउंसिल की बात करूँ तो उसमें बहुत स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं, ताकि जो जितने भी युवाएँ हैं, चाहे मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएट या मेरे जैसे पीएचडी होल्डर्स में, हम लोग जाकर उधर अपना जो रिसर्च प्रपोजल है हम लोग प्रपोज करते हैं सरकार को कि हमारे पास ये है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है और हम लोग इसमें कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उधर क्या होता है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल के आपको सुनते हैं कि ठीक है आपके पास ये आइडिया है, अब हम उस आइडिया को लेके कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ बहुत ही होते हैं, अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो और ज़्यादा जानकारी मिलते हैं। तो एनजीओस में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने जो, तो एम्बेसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है।
0: मुझे लगता है एक कौशल डेफिनेटली हम मॉरिशन भारत में सीख करके आते हैं, वो है बार्गेनिंग।
1: जी
0: बार्गेनिंग मुझे लगता है, क्योंकि सुबह अपार्टमेंट से निकलने के बाद रिक्शे वाले के साथ हम बार्गेनिंग करते हैं,
1: झगड़ा बहुत करते हैं,
0: बिल्कुल कचौरी से लेकर के पानीपुरी तक।

0: पानीपुरी से लेकर के बाजार में, मंडी में, जहां पर भी है वहां पर हम बार्गेनिंग करते हैं। और ये बार्गेनिंग स्किल हम लोग यहाँ पर आकर के जब हम मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं, एडवर्टिजमेंट की दुनिया में आते हैं, वो मार्केटिंग स्किल्स, वो बार्गेनिंग जो हम लोग चांदनी चौक के सड़क पर कर रहे थे, वही मार्केटिंग स्किल बन करके यहाँ पर आकर के हम उसका बहुत ही डिप्लोमेटिकली तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं।
1: ये आपने बहुत बिल्कुल सही कहा है।
0: बिल्कुल। और आपके हिसाब से मॉरिशस के जो नौजवान जब अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं, तो आपको लगता है कि वे लोग एक एसेट के रूप में उसको, उसका फायदा उठाना जरूरी है?
2: जी हाँ, जरूर। जैसे कि डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि युवाओं को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलते हैं अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को दर्शाने के लिए। तो यहाँ इन युवाओं को सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म दिए जाए तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने व्यवसाय, तकनीक और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। वे न केवल सामाजिक योगदान देते हैं, अपने कार्यों में एफिशिएंसी भी लाते हैं। तो इन बातों को वे अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: और मुझे लगता है कि जब आप दूसरे देश में पढ़ाई करने जाते हैं, जब आप आपको एक छोटा सा मतलब जख्म हुआ है या फिर आप बीमार पड़ गए हैं, तो आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास न माँ है, न पिताजी है, न बड़े भाई हैं।
3: उस टाइम पे तो हम खुद माँ, बहन, पापा, मम्मी, दादा, दादी सब होते हैं।
0: आप कोविड के टाइम थे वहाँ पर, और किस तरह से आपने उस गंभीर स्थिति को आपने संभाला है?
3: तो उस टाइम पे मेरा जो मास्टर्स था वो कंप्लीट हो गया था।
0: उस समय आप मास्टर्स कर रहे थे?
3: 2020 में कंप्लीट हो गया था।
0: ओके।
3: लेकिन जब कोविड आया तो हम बस मॉरिशस के लिए फ्लाइट नहीं था।
0: अच्छा।
3: तो मुझे अगर याद है तब मैं बनारस में पढ़ रही थी, तो हम लोग 15-16 मॉरिशस थे, तब हम लोग उधर रहे। और आप यकीन नहीं करोगे कि जो हमारा जो पढ़ाई के टाइम था, अब हम लोग फ्री हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक आपसी बॉन्डिंग बना दिया मॉरिशन के साथ,
0: क्योंकि उस वक्त सब कुछ ठप पर गया था।
3: तो हम लोग कोविड में थे भारत में, और मैं एक साल बाद मॉरिशस आई थी।
0: अब आप हमें ये बताइए रक्षिता, जब एकेडमिक ज्ञान के अलावा विदेश से लौटने वाले जो छात्र हैं अपने साथ कल्चरल नेटवर्क भी लाते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, वे विभिन्न देशों की संस्कृति, काम करने के तरीके और सोचने का तरीका और अपनी जीवन शैली को समझ कर आते हैं। इससे वे अपने देश में एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण, जैसे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाते हैं। वे अलग अलग देशों के लोगों से बने अपने संपर्क, अपने नेटवर्क को व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और अपने रोजगार के अवसरों बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं।
0: आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेकर के आपने भी बात की है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर उनके जो आर्थिक स्तंभ हैं उनमें एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म, पर्यटन क्षेत्र, देशातन, और इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि हम लोग इस क्षेत्र को, आपके जो स्किल हैं मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है?
2: जी, वहाँ जब मैंने बहुत घूमा है अपने,
0: आपने बहुत हाँ डेफिनेटली भारत एक ऐसे देश है, जब हमारे पेरेंट्स हमको पैसे देते, वो कहते थे मॉरिशस आइए छुट्टी मनाने के लिए, हम कहते थे पैसे हमें वापस दीजिए, हम वहाँ पर जा करके अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, तो ऐसा हुआ आपके साथ?
2: तो वापस आके मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे भारतीय जनता हैं जो मॉरिशस जानते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, तो वे अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फॉरेन एक्सचेंजेस और अपनी भाषा को यहाँ पर और बढ़ावा देते हैं, और उनको, वे जानते भी हैं कि मॉरिशस एक ऐसे देश है जो भारत से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके और उनकी ऐसी जैसे

0: उनकी रीतियों रिवाजों उनकी भाषा को सीखने से यहाँ पर आकर उनको ऐसे देखना कि वे अपने संस्कृति को और बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अपने युवाओं को टूरिज्म की ओर और बढ़ाए और उनको मॉरिशस को एक अंतर्राष्ट्रीय
1: हब
0: के रूप में देखें,
1: तब्दील करें। हाँ, और आपके लिए जब मतलब कल्चरल नेटवर्क के बारे में बात करें, आपने कहा कि आप मॉरिशस में रह करके भी अभी भारत का एक एसोसिएशन में, तो किस तरह से आप उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं?
2: मेरा अभी जब मैं मॉरिशस वापस आई हूँ तो वर्कलोड ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब मैं भारत में थी तो मैं फिजिकली प्रेजेंट थी, तो मैं काम संभालती थी, मैं मीटिंग्स में जाती थी, मैं चीज़ों इवेंट्स को लीड कर सकती थी फिजिकली। अब जब मैं मॉरिशस आई हूँ तो सब कुछ जैसे ऑनलाइन हो गए,
1: वर्चुअली सब कुछ,
2: वर्चुअली। और इसमें संवाद बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप कैसे संवाद करोगे कि ठीक है इस समय ये करना है, उस डेट पे ये प्रोग्राम होना है। तो इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर कौशल के बात करते हैं, इसमें ये अप्लाई होता है।
1: अच्छा,
2: तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है और कम्युनिकेशन का जो वो का जो एकदम वेट है उसको कैरी करना है। तो अगर मैं अपने बात इसमें पर्सनल चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्रेशर फील होता है दिमाग में कि भा मैं यहाँ पे हूँ और मेरे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो भारत में हैं, तो ये लोग कैसे काम संभाल रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी आता है, कंट्रोल में रहना चाहिए कि अच्छा ठीक है कंट्रोल, आपको ये करना है, आपको काम को चलाना है, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना काम चलाना है।
1: बिल्कुल। स्वदेश लौटने के बाद कैसे एक नौजवान इनोवेटर्स बन करके आते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं एज एन इनोवेटर?
2: देखिए, जब आप भारत में होते हैं या किसी भी देश में होते हैं तो आप अनुभव लेकर आते हैं, ठीक है, आप स्किल्स लेकर आते हैं। तो उस स्किल्स को, उस अनुभव को जब आप अपने देश वापस आते हैं तो आप उसका आप देखते हैं, आप खोज करते हैं, आप शोध करते हैं कि किस क्षेत्र में उसका प्रयोग होगा, तब जाके आप उसका सही प्रयोग कीजिए। मान लीजिए अगर आप गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है, और आप मॉरिशस में आके आपको पता है कि ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? जब आपके पास वो डिफरेंट टैलेंट है तो आप खोज कीजिए। इसलिए खोज शोध बहुत ज़रूरी है इस इनोवेटर्स, इस इनोवेशन को लाने के लिए। तब जब आप शोध करते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में ये कमी है, तो मैं अपना जो अनुभव है, मैं जो अपना स्किल्स है, मैं उसमें लागू करती हूँ। तभी देश में इनोवेशन नया होता है, नए विचार होते हैं, मेरा ये मानना है।
1: मतलब देश के आर्थिक विकास में, देश को आगे बढ़ाने में रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको पता नहीं होता है कि अब मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अपने अंडर ग्रेजुएट करने के बाद मैं क्या करूं, तो आप रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा अपना समय बिता सकते हैं। मॉरिशस एक छोटा देश तो है लेकिन यहाँ पर रिसर्च यानी कि शोध करने की अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं बहुत हैं, एवेन्यूज बहुत हैं, और इसको लेकर के अगर आप काम करना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है। जिस तरह से अभी डॉक्टर नंदिनी झुमक ने कहा, ये 8 साल कैसे निकल गए उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर वे काफ़ी एंगेज थे रिसर्च को लेकर के। आप हमें ये बताइए रक्षिता, इनोवेटर्स बन करके वापस आकर के देश के लिए क्या किया जा सकता है?
0: हम एक नौजवान की तरह हैं और हम एआई, आजकल एआई बहुत प्रयोग किया जा रहा है, हम नौजवान एक एआई और चैट जीपीटी जैसे एआई को यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर अपना सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, हम एक बिजनेस को

0: ओपन कर सकते हैं ताकि हम कुछ नए उपयोग को प्रस्तुत करें।
1: उन्होंने बिजनेस के बारे में बात की है, हम बात कर कहना चाहेंगे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के बारे में, किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप लोगों ने एक्वायर किया है और उस लौटते समय यहाँ पर लौटने के बाद आप किस तरह से डॉक्टर नंदिनी जुमाकर सोच रहे हैं कि चलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल मैंने भारत में सीखा, अभी एक मैंने बार्गेनिंग मार्केटिंग के बारे में बात की है, इसके अलावा
2: पढ़ाई के दौरान या ऑर्गेनाइजेशन संभालने के दौरान में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत सीखे हैं। इसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग, इसमें मैंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया है और उसको मैंने बहुत लागू किया है। अब जब आप वापस आते हैं या अब खुद अपने ज़िंदगी में आप फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो ये जितने भी स्किल्स हैं आपका जैसे एक गाइड बन जाते हैं।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। अब आप हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर के बात करते हैं, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर मैं बोलती हूँ कि उनके पास ऐसे स्किल्स होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके। तो अगर आपके पास सही डिसीजन मेकिंग स्किल्स होता है तो आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस लीड कर सकते हो, आप देश के लिए एक बहुत अच्छी एसेट बन सकते हो।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: लेकिन अगर आपके पास खुद टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप लेट से उठते हो, आप मीटिंग में लेट हो गए हो, तो लोग आपको अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये झूठ मूठ का एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर आप सही डिसिप्लिन अनुशासन के साथ आप डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो, तो आप एकदम मजबूत होके समाज में आते हो।
1: और आपके लिए आपके अनुसार विचार क्या है?
0: मेरे अनुसार बजट, हम बार्गेनिंग के अलावा में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल आते हैं, जैसे कि वहाँ पर जाके हम संवाद करते हैं उन दुकानदारों से, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ज़्यादा है कि वो हमें इमोशनली उनके भावों में डाल देते हैं,
1: खासकर साड़ी खरीदते समय।
0: जी जरूर,
1: हाँ बिल्कुल,
0: हमें इमोशनली इन अपने भावों में डाल देते हैं कि हम खुद जाके वो साड़ी खरीद भी लेते हैं, एक ऊंचे प्राइस में भी खरीद लेते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ऐसे लीडरशिप होना चाहिए, ऐसे आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने ग्राहकों के साथ अट्रैक्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ताकि हम भी उनको अपने मुट्ठे में डाल सके।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचना है। बिल्कुल, और उस प्रोडक्ट को लेकर के जो मार्केटिंग आप करेंगे, जो जिस तरह से आपने कहा, उस आप उस ग्राहक को अपने झांसे में लाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करना चाहेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि बस 5 मिनट बाकी हैं। अल्फा जनरेशन आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये लोग हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे देश के कर्णधार हैं, भविष्य के कर्णधार हैं?
2: मेरा ये मानना है, मुझे अल्फा जनरेशन को बोलना है कि आप लोग ज्यादा पढ़े, ठीक है, आप खोज कीजिए, आप शोध कीजिए,
1: घुमा फिरा करके रिसर्च करना जरूरी है।
2: हाँ
1: बिल्कुल,
2: आपको यही करना है, और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी था, मैं नहीं बोल रही नहीं था, लेकिन उतना जो जैसे
1: एडवांस
2: तरीके से है अभी, हर चीज में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट्स में चैट जीपीटी है, हमारे टाइम में नहीं था। जब मैंने PhD किया तो चैट जीपीटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें प्लैजरिज्म होती है। तो मैं अल्फा जनरेशन से कहूंगी कि आप हार मत मानिए, ठीक है, सपने पूरे होते हैं लेकिन बहुत लगन और मेहनत के साथ।
1: और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अल्फा जनरेशन? तो आप खुद अल्फा जनरेशन?
0: मैं खुद एक अल्फा जनरेशन हूँ, और अभी के लिए मेरे लिए ChatGPT बहुत ही यूजफुल है, पर उसका प्रयोग उचित तरीके से करना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, ChatGPT है, कंप्यूटर्स है, AI है, लेकिन हमें खुद से काम करना चाहिए, क्योंकि AI सब कुछ नहीं होता, और हमें पुस्तकों का प्रयोग भी करना चाहिए, ताकि हम

0: और जान सके।
1: जाते जाते डॉक्टर नंदिनी जुमा का आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, भारत ने मुझे शिक्षा दी है और मॉरिशस ने मुझे पहचान दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हार मत मानिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप मॉरिशस में पढ़ रहे हो, भारत में पढ़ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया या विभिन्न देशों में पढ़ रहे हो, आप एकदम डेडिकेशन के साथ, एकदम जैसे फर्म होके आप आगे बढ़े और अपना स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए और वापस अपने देश आइए, क्योंकि आपकी देश को आपकी ज़रूरत है। जब आप देश वापस आओगे, हार नहीं मानोगे, तब आप बहुत खुद आगे बढ़ पाओगे।
1: और रक्षिता जी?
0: मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और किसी भी डेडिकेशन अपने डेडिकेशन के साथ अपना काम करें, अपने शिक्षा को पूर्ण करें, बाहर जाएं, अपने पढ़ाई करें, घूमें फिरें, मस्ती करें, अच्छे से पढ़ाई करें और वापस आकर अपने देश की सेवा ज़रूर करें। और हमारे देश बहुत ही सुंदर हैं। मैं बाहर अभी पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन अपने देश की बहुत याद करती हूँ। तो आप वापस आकर अपने देश की सेवा करें और अपने लिए बहुत आगे की सोच करें। आप डरिए मत, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे।
1: जी हाँ, बिल्कुल, अपने जो विश्वास है उसको चट्टान की तरह मजबूत रखते जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षिता कि आप यहाँ पर आए। आपकी जो छुट्टी है अच्छी तरह से हो और जब आप भारत जाएंगे बनारस में मेरे नाम पर गोलगप्पे भी खा लेना। और नंदिनी जुमक डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं और आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा MBC की पूरी टीम की ओर से। आप दोनों देश के भविष्य के कर्णधार हैं, इसी तरह से देश के आर्थिक व्यवस्था में आप लोगों का योगदान भी बहुत जरूरी है। तो श्रोतागण, दर्शकगण, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक कहावत है, यू नीड टू थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। इसे कहते हैं ग्लोकल, कि आप अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव के साथ आप सोचिए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप स्थानीय तरीके से करें। इससे देश की आर्थिक विकास होगा, देश की प्रगति होगी और इसी तरह से आप अपने देश के योद्धा बनेंगे। जिस तरह से हम कहते हैं, अहम अस्मि योद्धा न कदापि खंडितः। खंडित नहीं होने दीजिएगा अपने विश्वास को, अपने आप को योद्धा के रूप में अपने देश के जो चट्टान है मजबूत करते जाइए, उनके जो पिलर्स हैं उसको और ज्यादा। और आदाब।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज सेशल्स की ओर प्रस्थान हो रहे हैं। वे सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों में भाग लेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक अमिनी ने उन्हें आमंत्रित किया था। इसकी बदौलत मॉरिशस और सेशल्स के बीच संबंध मजबूत किए जाएंगे, खासकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष को लेकर। रिश्यू विमेन एम्पावरमेंट सेंटर को बंद किया गया था, इसे पिछले 22 फरवरी को फिर से खोला गया। आज यहां पर महिलाओं की रचनाओं को सम्मानित करने का दिन है। महिलाओं की को अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। नए उपकरण भी दान में दिए गए। और आज रिफॉर्म पार्टी ने हेनेसी पार्क होटल में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। कई विषयों पर चर्चा हुई, पब्लिक बीचेस, मैटरनिटी लीव, मेंस्ट्रुअल लीव आदि। पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया कि समुद्र तट अच्छा समय बिताने का एक स्थल है और ये सभी मुरशनों के लिए है। विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे भी अपने मित्र और सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अमिनी के निमंत्रण पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा से पहले जारी प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हम यहाँ ग्यारी जी, नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत। शनिवार है, शाम के 4:08 हुए हैं और यहां पर शुरू होता है आज का हमारा कार्यक्रम गीत गाथा देश की। आज की तारीख 27 जून और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 27 जून हर साल के 27 जून को मनाया जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज डे अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। सो आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को सम्मानित करना चाहेंगे जो मॉरिशस में इस प्रकार के उद्योग चलाते हैं। और जब हम ऐसे उद्योग की बात करें तो आज के लिए विशेष तौर पर हम सम्मानित करना चाहेंगे आपके मैसेजेस के जरिए, आपके फ़ोन कॉल्स के जरिए उन सभी हेयरड्रेसर को, नाई को। और हम जानते हैं कि बहुत से सैलून्स में इस समय रेडियो मनोरंजन सुनते हैं, उन सभी दर्जियों को, टेलर्स को जो पुट्टू बनाते हैं, जो बाइसिकल मैकेनिक होते हैं,

जो ग्लासों घापे बनाते हैं जो मिट्टी के दिए बनाते हैं फेब्लांची जिसे कहते हैं लोहे के जो कारीगर होते हैं अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को अगर वे भाग लेना चाहे तो अवश्य भाग लें अन्यथा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 402 80 70

गीत गाथा देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। देवी और सज्जनों, हर एक सप्ताह में हम ये कोशिश करते हैं कि एक दिन सप्ताह में एक दिन हम अपनी गाड़ी को घर पर रखकर पैदल काम पर जाते हैं, और जब हम पैदल जाते हैं तो रास्ते में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, उनको देखने का हमें अवसर प्राप्त होता है, जिन्हें हम अगर ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो नहीं होते हैं। ये सब लोग को पहचानना जैसे कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादातर सड़क पर होता है, ड्राइविंग पर होता है, और हम रेडियो सुन रहे होते हैं। तो ऐसे जब लोग अपने अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, तब ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से आप मिल पाएंगे जो आपके रास्ते पर रोज होते हैं लेकिन अक्सर आपको नहीं दिखाई देते हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया, आज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज्ड इंटरप्राइज डे हैं, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस। और अभी भी जो गाना हमने चलाया वो हमने लिया फिल्म शोर से, जहाँ पर मनोज कुमार एक साइकिल चलाते हुए ये गाना गाते हैं। तो जो पहले कारीगर के बारे में बात करना चाहते हैं वो है साइकिल मैकेनिक। कब पिछली बार के लिए आप एक साइकिल मैकेनिक के दुकान पर बैठे, क्या आपको याद है वो महक जो वहाँ पर मिलती हैं, जो दृश्य देखने को मिलते हैं, और किस तरह से वो बैठकर अपना काम करते हैं, पंक्चर को ढूंढते हैं, एक टायर को लेकर पानी में डुबाते हैं, उसमें सबसे पहले हवा भरते हैं और फिर उसको पानी में डुबाते हैं, और कैसे पंक्चर को ढूंढ निकालते हैं और कैसे उसकी मरम्मत करते हैं, ऑल दिस। और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन सभी मैकेनिक को सलाम करते हैं उनकी मेहनत के लिए, एंड फॉर ऑल दैट दे हैव गिवन फॉर देमसेल्व्स, और साथ ही साथ इस देश

शाम के 4:25 हुए हैं और आप सुन रहे प्रोग्राम गीत गाथा देश की संजय के साथ। आज माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, और आज हम विशेष तौर पर उन उद्योगों के बारे में बात करें, लोगों के बारे में बात करें जो इस तरह के कार्य करते हैं। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन 4 2 4 1 2 6। अगर आप किसी ऐसे कारीगर को जानते हैं जो इस तरह का काम करते हैं और उनके बारे में बात करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर खुला है 4 2 4 1 2 6। साइकिल मैकेनिक के बाद बात करने के बाद अब जो बात करेंगे हेयर ड्रेसर के बारे में। ऐसा कब हुआ पिछली बार जब आप हेयर ड्रेसर सैलून में जाकर बैठे थे, और कब आपने एक नाई को अपना काम करते हुए देखा? वो एक ज़माना था जब एक महीने में एक बार या तो स्कूल की शुरुआत से एक दिन पूर्व हमारे पिताजी हमको नाई के पास ले जाते थे, और हम बैठकर उतना खुश तो नहीं होते थे क्योंकि बाल काटना एक आप तो समझते हैं, लेकिन हम जाया करते थे। और किस तरह का वातावरण उस हेयर ड्रेसर सैलून में हुआ करता था, किस तरह की तस्वीरें होती थीं जहाँ पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जीना तमन, वैजयंती माला, जो पुराने पोस्टर्स थे, फिल्मों के पोस्टर्स सब देखने को मिलते थे, और किस तरह की महक वहाँ पर से आती थी। वो एक अलग ज़माना था और आज एक अलग ज़माना है। सो आज हम सलाम करना चाहते हैं उन सभी चाचाओं को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नाई का काम करते हुए बिताई, और इसी मेहनत के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया जो आज ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज डे के अवसर पर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर हम ऐसे ही इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और चलिए हम लाइन पर इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार सरोजनी जी।
1: नमस्कार,
0: आप गोवा के रहने वाली हैं?
1: गोवा।
0: अच्छा, आप बताएं कि आप किसी और विशेष कारीगर के बारे में बात करना चाहते हैं, और वो है कौन?
1: मैं 6 साल की हूँ
0: जी।
1: मैं मातलाचे के बारे में बोड़ा की हूँ।
0: यानी कि जब आप 6 साल की थी तब जो घर घर पर आते थे और यानी कि मतला बनाते थे।
1: वी मतला।
0: हाँ, तो
1: पहले हाला तो मतला गोनी बा।
0: हाँ, तो उस जमाने में घर घर जाते थे और जो पुराने मतला जो डिफॉर्म हो जाते थे उनको निकालते थे।
1: गोनीवा।
0: हाँ, आप गोनी निकाल के
1: गाजों पर
0: खोलकर
1: लपाई कोको
0: डालते थे।
1: डाल देते।
0: हाँ,
1: मतला के जब सी मतला
0: और उसको धूप में सुखाते थे। तब उसको फिर
1: सुखाते लपाई कोको।
0: हाँ,
1: और लोंग लिग्विबा जिग्वी कुदसक।
0: हाँ, उसके साथ उसको फिर से सीते थे।
1: जब जी फील ऐसा वहाँ पर हम अब जी फील जब पुली।
0: हाँ, और उसके बाद
1: मतला जब फिर होगा तो 5 रुपया।
0: 5 रुपया, इतना काम एक ही व्यक्ति के लिए? एक ही व्यक्ति आवत है या एक दुआ एक के जना आवत रंजा या
1: नहीं? दू जना।
0: दू जना आवत रंजा। और दू जना में इतना काम करके उन लोग के 5 रुपया देवल जाता।
1: 5 रुपया।
0: हाँ,
1: लापुट लाफिसेल दे।
0: हाँ, सब कुछ लावत है रंजा।
1: हाँ,
0: एक दिन में काम हो जाता।
1: हाँ, एक दिन।
0: लेकिन एक काम करके छला घाम के दिन जब घमा रहे हो तब। हाँ, एकदम भूल गए नहीं। लेकिन बहुत बहुत आपको शुक्रिया सरोजनी जी कि हमने के याद दिलाया कि ऐसा भी काम रहा। लेकिन आजकल ये सब नहीं दिख रहा।
1: हाँ,
0: अब तो मुड़िया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजनी।

0: जी। सो जितने भी लोग जितने भी लोग को याद है ऐसे काम, आप हमें फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: जय मॉरिशस। ऐसा भी जमाना था, ऐसे भी कार्य थे, ऐसे भी काम करने वाले थे। ये भी हमारी एक विरासत है, उनको याद करना भी ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उन्हीं के रखे गए नींव पर आज का हमारा ये समाज खड़ा है।

अगर आप किसी फेयर ब्लांचे के बारे में जानते हैं किस तरह से वो काम करते थे तो आप हमें फोन कर सकते हैं 1902 1906 जो लोहे का काम करते थे

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा आदेश की इस संजय के साथ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर ये विशेष प्रोग्राम हमारी ओर से चल रहा है और आज हम उन सभी उद्योगों को सम्मानित कर रहे हैं छोटे उद्योग जो एक जमाने में बहुत ही देखने को मिलते थे लेकिन आज बहुत ही कम हो गया। आज हम सब अपने कंफर्ट जोन में ऐसे जी रहे हैं कि भूल जाते हैं कि रिसाइकल क्या होता है, रीयूज क्या होता है। आज तो हम सिर्फ वन टाइम यूज प्रेता पोते जैसे कहते हैं, सिंगल यूज आइटम्स खरीदने में बहुत ही माहिर हो गए हैं। अगर नहीं ठीक रहा तो उसे फेंक कर तुरंत झट से दूसरा खरीद लेते हैं, जबकि एक ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर कुछ टूट गया है तो उसको मरम्मत करने के लिए हम किसी कारीगर के पास जाते थे। अभी अभी किसी ने फ़ोन करके हमें याद दिलाया कि मिट्टी के दिए बनाने वाले भी होते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ दीपावली से पहले ही लोगों को याद करते हैं, जबकि ये लोग पूरे साल के दौरान अपना काम करते रहते हैं, मिट्टी के जरिए अपने दिए बनाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि दिए सिर्फ दीपावली के अवसर पर खरीदे जाते हैं, लेकिन नहीं, दिए तो बहुत से लोग पूरे साल के दौरान खरीदते रहते हैं। सो आज इस मंच पर से हैं उन सभी दिए बनाने वालों को हम यहाँ पर से सलाम करते हैं।

0: पांच बजे में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। चलिए हम आपको संगीता जी से मिलवाते हैं। संगीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार अनिल भाई, नमस्कार।
0: संगीता जी आप हमें पहले बताएं कि आप कहाँ के रहने वाली हैं?
1: हम लालमाटी के रहने
0: वाले। लालमाटी के हवा। हाँ,
1: लालमाटी
0: के। अच्छा, आप किस उद्योग के बारे में बात कर रहे खोजा था?
1: हाँ,
0: फेयर ब्लांची।
1: हाँ, जल्दी मौत के दिन पहले के सामना करते हैं। पहले के जुमा से देखा एगो एगो कैटोलिक रहे एगो भैया एगो जैसे पास हो गलन सबके बाके जिना को ये बाके चीजें सबके पेवन डाली और देखे बीच हुई था पेवन डालाई ऊपर में फेंकाए नहीं। अब बिदों हम अम्मा के बिदों रखल हम अम्मा के दे गए रहत सरलन।
0: हाँ,
1: मैं बिदों में देख बार बिदों से हुआ था तब शुद्ध कर दिया
0: टूट जाता तो ये लोग दिमाग के दिन के आवा था रंजा और उन सब में उन सब की मरम्मत करा था रंजा। लेकिन आजकल तो जब
1: पहले धूम में पानी भर दिया धूम में से छू ना।
0: हाँ,
1: धूम में मामा कुलदार मास्टर का चलन एक कुटा देगा के भगवान डाल।
0: जब जब धूम में तुरु हो जाता तो उनमें कुलदार डाल वो एक जमाना था। वो एक जमाना था।
1: अब कैसे वो ब्लैक एच यू रहा कोई नहीं बना के उच्च वार्ता फिर वो कैसे करवा वो बुटी गो काट के ले बक्का के पुणे करते करे लाख दुनी रहते ले लाख दुनी से सिर्फ जमाने और उन्हीं चुए दिन के बाद तेरी करते थे जब चुके जाए तब दूसर मर मर चल।
0: संगीता जी इन जो बात बोला था ये सब के याद कर करके कहाँ पहुँच गए सब। आजकल तो आजकल तो प्लास्टिक के जमाना है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। मिली मिली मिली कि नहीं मिली
1: पता नहीं पैसा नहीं मिली पैसा नहीं इधर नहीं मिली भैया।
0: हाँ हाँ, तो संगीता जी हाँ वो दूसरा जमाना रहा। अच्छा फिर से मिलब जा संगीता जी।
1: अच्छा भैया संजय नमस्कार और शुभ रात्रि और
0: जय मॉरिशस। जय मॉरिशस। माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। आज हम उन उद्योगों को सम्मानित कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने प्राचीन काल में इस तरह के काम किए और आज भी कर रहे होंगे लेकिन हमारी नजरों के सामने नहीं होते हैं।

लोगों को के सम्मान में हमने बात की, किस तरह से नाई जो हेयरड्रेसर होते हैं, दर्जी जो टेलर होते हैं, साइकिल मैकेनिक, पुतू बनाने वाले, मिट्टी के दिए बनाने वाले, फेबलोंगची जिसे कहते हैं, उन सब के बारे में बात की। अभी अभी जो गाना चला उसे हमने लिया था फिल्म दो जासूस से, और दो जासूस फिल्म में एक एक जगह है जहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस एक नदी को पार करने के लिए एक नाव का एक नैया लेते हैं और वहाँ पर ये गाना चलता है। और जब ये गाना चल रहा था तो हमें रामचरितमानस का वो प्रसंग याद आया जब भगवान श्री राम जी माता सीता सहित और भ्राता लक्ष्मण सहित उनको गंगा पार करना था और तब वे केवट के पास पहुँचे थे। ये प्रसंग जो बहुत ही मनमोहक हैं और जहाँ पर श्री राम जी ने एक केवट को सम्मानित किया, इस तरह से इससे हमें बहुत बहुत गहरी सीख मिलती है कि हम किसी भी ओहदे के हो जाएं लेकिन हमें छोटे से छोटे लोगों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। यही था हमारा लक्ष्य आज के इस प्रोग्राम के जरिए, हम सबों का सम्मान करें, सबों का आदर करें और सबों का सहयोग इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में उन सबों का सहयोग, उन सबों की योगदान का सम्मान करें। इसी के साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे अगले शनिवार को। आज के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय सियाराम। जय मुर्शिदाबाद।

और एम फ्री रेडियो मनोरंजन की लहरों पे आप सबों को जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल 94.5.698.2 MHz पर शाम के 5 बजे है और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक पुराने गीतों का सौगात हम लेकर आए हैं। पुराने नगमे, ओल्ड इज गोल्ड, डाउन मेमोरी लेन, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे सर्वाहर गीत हम लाए हैं जिन्हें सुनकर आपको आपके दिन याद आ जाएंगे, वो जवानी के दिन, वो जवानी के पल, ओए होए क्या बात है। तो चलिए यादों की दुनिया में आपको ले चलते हैं और ये पहला तराना फिल्म नमक हलाल से लिया गया, रात बाकी होना है, जो अभी रात नहीं अभी तो शाम बाकी है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, बारिश हो रही है, इस बारिश और ठंडी हवाओं का मजा लीजिए और सुनिए पहला गाना फ्रॉम द मूवी नमक हलाल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

रात बाकी बात बाकी। जी हाँ, बहुत सारी बातें आपसे करनी हैं। और कितने दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है आज शाम को। अरे भाई, सुबह तो आपसे मुलाकात हुई थी, आज की सुबह आपको याद है ना, 6 बजे से 9 बजे तक मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना प्रोग्राम में। और अभी चल रहे प्रोग्राम पुराने नगमे। हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग पुराने गीतों के शौकीन हैं। और अब हम प्रस्तुत करेंगे गाना रीना रॉय पर, पिक्चराइज। रीना रॉय जो है 1972 में फिल्मों में कदम रखा था,

लेकिन उन्हें असली सफलता 1976 में मिली फिल्म कालीचरण में, और इस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब। रीना रॉय ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जैसे नागिन, जानी दुश्मन, आशा, अर्पण, बदले की आग और नसीब। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया, और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के प्रेम संबंध उस समय बॉलीवुड में सबसे चर्चित रिश्तों में से था। हालांकि दोनों ने विवाह नहीं किया और बाद में उनके रास्ते अलग हो गए। 1983 में रीना रॉय ने मोहसिन खान, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर से विवाह किया। उनकी एक बेटी है जन्नत खान। बाद में उनका तलाक हो गया और रीना रॉय अपनी बेटी के साथ भारत लौट आई। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों और टीवी में कुछ समय के लिए वापसी की। हालांकि वे पहले जैसी सक्रिय नहीं रही, लेकिन आज भी उन्हें बॉलीवुड और प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से गिना जाता है। रीना रॉय ने अपने कैरियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 1970 और 1980s के दशक की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से माना जाता है। उनकी अभिनय शैली, आकर्षक व्यक्तित्व और यादगार भूमिकाएं आज भी दर्शकों को बेहद लोकप्रिय है। तो चलिए उन्हीं पर पिक्चर से गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है आशा। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है।

जी हाँ, शीशा हो या दिल हो, दिल टूट ही जाता है, सो कभी भी किसी का दिल मत तोड़िएगा, क्योंकि दिल में प्यार बसता है और प्यार भरा दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। पुरानी नगमों में अब हम शामिल करेंगे गोविंदा पर एक फिल्मी गीत। जी हाँ, गोविंदा साहब हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है, बेहतरीन कॉमिक एक्टर है वो, शानदार डांस करते हैं, दमदार अभिनय है और हम इसे बहुत से लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। यस, और उन्होंने जो है बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्मी कैरियर के बारे में कहे तो गोविंदा ने 1986 में फिल्म इल्जाम से बॉलीवुड में पदार्पण किया। यस, ही मेड हिज डेब्यूट एंट्री इन द बॉलीवुड विद द फिल्म इल्जाम। इस फिल्म में अनीता राज उनके साथ थी, उनकी ऊर्जा और नृत्य शैली ने उन्हें जल्दी से लोकप्रिय बना दिया। 1990 के दशक में उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें थी लव 86, राजा बाबू, कोली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी और पार्टनर। गोविंदा को बॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ डांसरों और कॉमेडी अभिनेताओं में से गिना जाता है। उनकी अभिव्यक्ति, संवाद, उदागी और सहज हास्य ने उन्हें हर उम्र के दर्शकों का प्रिय बनाया है। उनकी जोड़ी करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय रही, हालांकि उन्होंने बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, अनिता राज एंड सो ऑन। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में प्रवेश किया और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से संसद 2004 में गोविंदा ने राजनीति में प्रवेश किया और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से संसद चुने गए। बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और फिल्मों में ध्यान केंद्रित किया। गोविंदा ने सुनीता आहूजा से विवाह किया है, जहां उनकी पत्नी का नाम सुनीता आहूजा है और उनके दो बच्चे हैं, तीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। गोविंदा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल है। उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे मनोरंजक कलाकारों में से एक माना जाता है और वो कॉमेडी रोल में बहुत अच्छे नज़र आते हैं और रोमांटिक रोल में भी। तो चलिए उन्हीं पर पिक्चराइज गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है लव 86, ओ मिस दीदी किस। अरे भाई, ये हम नहीं कह रहे ये शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं, द मूवी लव 86। चलिए इस गीत को सुनते हैं।

गोविंदा साहब जो है क्या नाचा उन्होंने इस गीत में। इस समय आप सुन रहे पुराने नगमे प्रोग्राम और इन फ्री रेडियो मनोरंजन की लहरों से। जी हाँ बेशक, अजय प्रताप सिंह के साथ शाम के 6 बजे तक। आज है सैटरडे 27 जून 2026। कई दोस्तों कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम? पहले के ज़माने में हॉरर फिल्म हुआ करती थी। जी हाँ, और बॉलीवुड की दुनिया में रामसे ब्रदर्स हॉरर फिल्म के लिए जाने जाते थे। सो 1984 में बनी थी फिल्म रामसे, श्याम रामसे और तुलसी रामसे के प्रोडक्शन की बैनर तले बनी फिल्म। फिल्म का नाम याद है आपको? पुराना मंदिर। असम के मुख्य कलाकार थे मोनिश बैल, आरती गुप्ता, पुनीति सार, अनिरुद्ध अग्रवाल, सदाशिव अमरापुरकर, ललिता पवार और सतीश शाह। फिल्म की कहानी लगभग 200 वर्ष पुराने शाह पर आधारित है। एक शक्तिशाली तांत्रिक और दानव सामरी को एक राजा द्वारा मार दिया जाता है। मरने से पहले वह राजा के पूरे वंश को श्राप देता है कि उस परिवार की हर एक महिला अपने पहले बच्चे के जन्म के समय भयानक मृत्यु का शिकार होगी। और वर्तमान समय में सुमन और उसका प्रेमी संजय इस श्राप की सच्चाई जानने के लिए अपने पृथक गांव और पुराने मंदिर पहुंचते हैं, जहां वहां अनजाने में समरी फिर से जीवित हो जाता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। इसके बाद संजय और उसके साथी सामरी का सामना करते हैं। अंत में संजय धार्मिक प्रतीकों और साहस की मदद से सामरी को हमेशा के लिए परास्त कर देता है। श्राप समाप्त हो जाता है और सुमन तथा संजय का मिलन हो जाता है। फिल्म की विशेषताएं ये हैं कि उस समय के लिए डरावने मेकअप और विशेष प्रभाव की जरूरत थी। रहस्य और रोमांच का सफल मिश्रण है इस फिल्म में। सामरी का किरदार भारतीय हॉरर फिल्मों की सबसे यादगार खलनायकों में से गिना जाता है। फिल्म की सफलता के बाद रामसे ब्रदर्स ने कई और हॉरर फिल्म बनाई, जैसे वीराना, पुरानी हवेली और बंद दरवाज़ा। हम जब इन फिल्मों के बारे में सोचते हैं तो रोंगटे कांप जाते हैं। आपको याद है वो ज़माना जब पुराना मंदिर फिल्म रिलीज हुई थी सिनेमा घरों में? माई गुडनेस, हम तो थर थर कांप रहे थे इस फिल्म को देखकर। पर फिल्म की खासियत यह है कि फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा रहा, खासकर ये गाना, वो बीते दिन याद है। ओए होए, क्या रोमांटिक गीत है। हालांकि फिल्म भूत प्रेत पर आधारित था, पर ये गाना, हाय हाय, आज हम जब सुनते ये गीत तो हमें अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद जाते हैं। तो आप भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद कीजिए और सुनिए गाना। वो बीते दिन याद है, वो पल छिम याद है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: पुराने नगमे
4: पुरानी नगमों की बात ही अलग होती है। हम बार बार उन गीतों को सुनते हैं और कभी उबते नहीं हैं, क्योंकि उनमें जो बोल है, जो म्यूज़िक है,

है, दिल को झकझोर देते हैं वो म्यूजिक वो बोल। और अपने ज़माने में बहुत सारी खूबसूरत अभिनेत्रियां हुआ करती थी, शर्मिला ठाकुर, रीना रॉय, स्मिता पटेल एंड वन एंड ओनली मंदाकिनी। यस, और उनका जन्म हुआ 30 जुलाई 1963 में। और उनका असली नाम आपको पता है, मंदाकिनी का असली नाम है यास्मीन जोसेफ। ओ यस, उनका जन्म हुआ मीरठ में। उनके पापा ब्रिटिश मूल के थे और मामा भारतीय थी। बचपन से ही मंदाकिनी को अभिनय और मॉडलिंग में रुचि थी। 1985 में प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता राज कपूर ने उन्हें राम तेरी गंगा मेरी फिल्म में भूमिका दी। यह फिल्म इस उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट मूवी रही, सुपरहिट मूवी। गीत, फिल्म के गीत और मंदाकिनी का अभिनय आज भी याद किए जाते हैं। और उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया, जैसे डांस डांस, मिथुन के साथ, प्यार करके देखो, जीते हैं शान से, लोहा, नाग नागिन और शेषनाग, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, आदित्य पांचोली, जितेंद्र और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने काम किया। फिर 1990 के दशक में मंदाकिनी की एक तस्वीर दाऊद इब्राहिम के साथ सामने आई, जिसके बाद मीडिया ने काफ़ी चर्चा हुई। हालांकि उनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके बारे में फैली हुई बातें अफवाहें थी। मंदाकिनी ने कग्युरती रिनपोचे ठाकुर के साथ विवाह किया। उनके दो बच्चे हैं। विवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार तथा आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया। कई वर्षों तक फिल्मी दुनिया से दूर रहने के बाद उन्होंने कुछ संगीत वीडियो और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से फिर से दर्शकों के बीच उपस्थित हुई। 1980 के दशक में वह सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। राम तेरी गंगा मेरी वो उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। सो चलिए उसी फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवाते हैं। सुन सबा सुन प्यार की धुन हो, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। इस फिल्म में मंदाकिनी के साथ नजर आई थी राजीव कपूर साहब। और इस फिल्म के सभी गाने एकदम ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। इस गीत को जितना हम सुनते हैं हम बार बार सुनना चाहते हैं। सो जितने लोग मंदाकिनी को पसंद करते हैं, यह गीत आपके नाम। सुन सबा सुन

हाँ जी, हमने सुन लिया। बोलिए, क्या सुनाना चाहते? शाम के 5:30 बज चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ, ऑन एम फ्री रेडियो मनोरंजन। जी हाँ, आप ही का नंबर वन रेडियो स्टेशन, और ये है MBC मुक्का में और 94.9 FM 98.2 MHz पर। जब हम पुराने गीतों के बारे में बात करते हैं तो पुराने अभिनेत्रियों के बारे में बात करते हैं। उनमें से थी अनीता राज। यस, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब हीरोइन थी ये अनीता राज। 1996 में उन्होंने फिल्म इंतजाम में काम किया था और उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। यह फिल्म निर्देशक शिबू मित्रा द्वारा निर्देशित थी और निर्माता पहलाज निहलानी की फिल्म थी ये। फिल्म में और भी आर्टिस्ट थे, जैसे गोविंदा, नीलम कोठारी, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर और अनीता राज स्वयं इस फिल्म में थी। और यह गोविंदा की पहली रिलीज हुई फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अनीता राज वॉज इन द मेन लीडिंग रोल। इस फिल्म में उसने कमल का रोल निभाया था। फिल्म में कमल एक साहसी और संवेदनशील युवती है। कहानी के रहस्य और अपराध से जुड़े घटनाक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वह कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर कहानी को आगे बढ़ाती है और उसके कारण फिल्म में रोमांच बना रहता है। अनीता राज ने कमल के रूप में गंभीर और भावनात्मक अभिनय किया। उस समय के बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से थी और उन्होंने एक एक्शन तथा ड्रामा फिल्मों में भी अपनी अलग अलग पहचान बनाई। इल्ज़ाम में भी उनकी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय की सराहना की गई है। और अनीता राज जो है इस फिल्म में काफ़ी अच्छी डांस परफॉर्मेंस दिया, खासकर इस गाने में, मैं आया तेरे लिए, उनका जो कॉस्ट्यूम

है, बॉडी लैंग्वेज है और जो बॉडी जेस्चर्स है लोगों को बहुत पसंद आया। और चलिए आज की शाम हम उन्हीं पर पिक्चराइज एक गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है इल्ज़ाम। नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन की आवाज़ों में मैं आया तेरे लिए, और हम भी आए हैं आप लोगों के लिए रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ देने के लिए पुराने नगमे प्रोग्राम में शाम के 5 बजे तक।

और अपने ज़माने में एक फिल्म आई थी इंतज़ार हम करेंगे, जहाँ बहुत हम इंतज़ार करेंगे, और इस फिल्म में नज़र आई थी पद्मिनी कोल्हापुर। जी हाँ, और जो है यह जो फिल्म है बहुत ही अच्छी फिल्म रही, 1989 में बनी थी ये फिल्म, और यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें जिसका निर्देशन किया प्रभात रॉय ने। फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऑफकोर्स पद्मिनी कोल्हापुर, मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा, शक्ति कपूर और शफी इनामदार। संगीत का सहारा दिया बप्पी लहरी साहब ने, और कहानी में फिल्म की नायिका मनीषा यानी कि पद्मिनी कोल्हापुर एक अमीर वकील की इकलौती बेटी होती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात अजय यानी कि मिथुन चक्रवर्ती से होती है। शुरुआती तकरार के बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। जब मनीषा के पिता विवाह की बात करते हैं तो अजय कहता है कि वह पहले अपने पैरों पर खड़ा होगा तब शादी करेगा। यह 3 वर्ष का समय मांगता है ताकि अच्छी नौकरी और आर्थिक स्थिरता हासिल कर सके। मनीषा और उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं। 3 वर्षों के बाद तक अजय पत्रों 3 वर्षों तक अजय पत्रों के माध्यम से मनीषा से संपर्क बनाए रखता है, लेकिन समय पूरा होने के बाद वह अचानक गायब हो जाता है। मनीषा

को लगता है कि अजय ने उसे धोखा दिया। इसके बाद कहानी में कई भावनात्मक मोड़ आते हैं और अंत में अजय के गायब होने का वास्तविकता कारण सामने आता है, तो गलत फहमियाँ और त्याग से जुड़ा होता है। अंततः दोनों प्रेमी फिर मिलते हैं और कहानी सुखद अंत तक पहुँचती है। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे ने मनीषा का संवेदनशील और भावपूर्ण किरदार निभाया है।

प्रतीक्षा और पीड़ा की भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उसकी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। चलिए उन्हीं पर पिक्चराइज एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, दूर है तो क्या हम तेरा इंतजार करेंगे।

और हमें अब भी याद है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और यह गाना रेडियो पर चलता था तो लोग बैठकर आराम से इस गीत को सुनते थे, क्योंकि इस गीत के जो बोल है, जो म्यूजिक है, ओए होए क्या कहे, मेसमराइजिंग म्यूजिक। और गीत के बोल भी बहुत अच्छे हैं। चलिए एक साथ सुनते हैं।

सांस आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, इसी फिल्म हम इंतजार करेंगे, इसी फिल्म के गीत के पुराने नगमे प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। शाम के 5 बजे से अभी तक आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद होगा नई सोच और दिलों की आवाज। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, आशा करते हैं कि आपका समय अच्छी तरह से बीता होगा। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम 3 से 4 बजे और इम्प्रूव रेडियो मनोरंजन इसी चैनल पर, प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है। टिल देन इज गुड बाय फ्रॉम मी और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आदाब, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है। अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानव अधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। सेशल्स गणराज्य सोमवार 29 जून को अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा। ये राष्ट्रीय समारोह लगभग 4 दिनों तक चलेगा। इस खास मौके के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने भारत समेत कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इन समारोह में शामिल होने के लिए आज शाम मॉरिशस से रवाना हुए। विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है, जहां गुरुवार को पेश आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा में कल रात बजट बहसें समाप्त हुई। अपने समिंग अप में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बजट 2026-2027 में लिए गए फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार पिछली सरकार की गलतियों और उससे हुए नुकसान को सुधारने का प्रयास कर रही है। उनके अनुसार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसले जरूरी है। साथ ही उन्होंने बजट के मुख्य कदमों, उनके लागू होने और आने वाले साल के लिए सरकार की कटिबद्धता की भी समीक्षा की।
1: En ouverture de son summing up, le Dr Navin Ramgoolam est revenu sur la situation économique héritée par son gouvernement. Il a affirmé que ce budget de continuité vise à corriger les déséquilibres laissés par l'ancien gouvernement, d'où, selon lui, des décisions difficiles mais nécessaires pour préserver l'avenir.
2: Growing fiscal pressures, rising debt obligations, broken down engines of growth and galloping inflation. 26.9 billion rupees just on interest. Nearly 27 billion just on interest because of the mess they did. Faced with these challenges, we had no choice. Malheureusement, Madame la Présidente, nous avons subi les affres d'une stratégie de déni chez certains qui ne veulent pas voir la vérité en face et de démagogie chez d'autres. Ils ne veulent pas voir les données objectives, les finances, la situation du fonds de pension et le risque de faillite à court, moyen et long terme. C'est pourquoi nous avons placé ce budget sous le signe du devoir de la vérité.
1: Le docteur Navin Ramgoolam a également répondu aux critiques formulées par l'opposition.
2: L'opposition a choisi de se focalisé sur le thème de la pension pour des buts purement politiques. Le leader de l'opposition reconnaît lui-même. Lui-même, il a reconnu que le budget comprend des mesures positives. Mais vous, you know what they're saying, chasser le naturel, il revient au galop. Il s'est cantonné, comme tout tant d'autres d'ailleurs dans, au sein de l'opposition, dans une litanie de propos démagogiques et dépourvus de bon sens et de sérieux. It would seem that he's a great fan of Gabar Singh. He chose to quote what Gabar Singh said in Shirley. Gabar Singh is back with him. Madam Speaker, I don't believe in Gabar Singh. I prefer Lord Krishna. And I quote from the Mahabharat, Kam Kiha, do your duty. Certains ont parlé d'incertitude et d'anxiété des ménages dans ce budget. Mais ils ne se rendent pas compte que la vraie incertitude, la vraie anxiété, c'est la viabilité du système de pension. D'une faillite annoncée du fonds des pensions par leur irresponsabilité. Si rien n'est fait aujourd'hui, on se dirige directement vers la disparition de toute forme de pension. In 10 years' time, in 15 years' time, nobody will get a pension if you don't do what we're doing now. Certains ont parlé de reculade. Alors qu'ils sont eux-mêmes coupables d'avoir acté la démagogie pour entraîner une reculade. Ils ont voulu instaurer un climat de doute et de confiance, de nous faire perdre le sens de notre responsabilité financière sans considération aucune.

0: que peut devenir l'avenir du pays. Nous avons fait preuve d'écoute, comme dans tous les pays démocratiques. Comme un gouvernement responsable, nous avons un devoir de responsabilité financière. Nous avons l'obligation de protéger ce pays. En fin de compte, protéger le peuple d'une faillite morale et le protéger, et c'est protéger l'avenir.
1: Le chef du gouvernement estime que les mesures du budget répondent à l'intérêt de toutes les composantes de la société, renforcent l'intégrité des institutions et contribueront à reconstruire l'économie. Il prend 3 engagements pour l'année à venir.
0: I am therefore making 3 commitments that will guide our actions in the coming year. First, transparency and accountability. We will publish quarterly performance reports on the budget's key indicators. Not easy for us, but we will do it. And open major programs of evaluations to independent review. Second, participation. We will expand consultations with stakeholders to fine-tune implementation and to ensure that programs reflect local realities. Third, we will adhere to the disciplined fiscal path while preserving its flexibility to protect the vulnerable, but to ensure that public sector investments are with high economic returns.
1: Le Premier ministre de conclure que ce budget est plus qu'un ensemble de mesures financières.
0: Ce budget, Madame la Présidente, ce n'est pas un ensemble de mesures financières, c'est un engagement vers le futur, vers l'avenir. Un engagement vers notre jeunesse, envers les travailleurs, envers les familles mauriciennes et surtout envers les générations qui nous succéderont. Nous leur devons des finances publiques assainies, une économie plus compétitive, un pays plus fort, plus juste et plus prospère.
2: अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानवाधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राज्यसभा में अटॉर्नी जनरल के ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में भी बात की। अफ्रीका का सबसे छोटा देश अपनी आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सेशल्स गणराज्य सोमवार 29 जून को अपनी स्वतंत्रता के 50 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा। ये राष्ट्रीय समारोह लगभग 4 दिनों तक चलेगा और इस खास मौके के लिए सेशल्स के स्टेट हाउस ने भारत समेत कई मित्र देशों को आमंत्रित किया है। भारतीय प्रधानमंत्री इन समारोहों के मुख्य अतिथि है और 2 दिवसीय औपचारिक यात्रा पर वे आज सेशल्स पहुंचे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इन समारोह में शामिल होंगे। वे आज मॉरिशस से रवाना हुए हैं। साथ ही अफ्रीकी संघ, चीन और रशिया के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेंगे। इस खास मौके के लिए विक्टोरिया की सड़कों पर जश्न का माहौल बना हुआ है और लोग 29 जून 1976 की यादें ताजा कर रही है।
3: सेशल्स द्वीप समूह में 1,00,000 से कुछ ज्यादा निवासियों के साथ माहे टापू विविध आबादी वाली जगह, ज्यादा से ज्यादा विदेशी कामगार, ये ही पर माहे टापू में प्रमुख सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। शुक्रवार के दिन केंद्रीय शहर में अभी मुख्य सड़कों पर गणराज्य का झंडा गर्व के साथ लहराता दिखाई दिया। अभी भी यहां विगत की खुशबू। ऐसे कई स्मारक हैं, स्थल हैं, जहां पर अंग्रेजों के निशान हैं। बुजुर्ग लोग जब इन्हें देखते हैं तो आज भी भावुक हो जाते हैं। 29 जून 1976 को आज़ादी मिली थी। जॉन क्रिस्टोफ बॉबिये ज्यादातर समय एवेन्यू डी लिंडेबॉन्डोंस में एक बेंच पर बिताते हैं। मेट्रो सर्विसेज के ये अवकाश प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्रता के दिन स्टेडियम में थे। उनकी तरह अन्य लोगों को भी वो अहम घड़ी याद है, इतिहास अंकित, जिसे बयां करना चाहिए।

0: Souvenir, regardez, c'est les pavillons Yuanjiak qui descendent, tu vois. Oui, tu comptes.
1: Et 50 ans après, ça comment ou tout vous pays il progressé?
0: Quantité de développement. Mais seulement, bon, souhaiter qu'il y avait doublé quand nous arrivons là.
2: 50 वर्षों की प्रगति जिसे विगत की पीढ़ी और आज की पीढ़ी अधिक आगे बढ़ते देखना चाहती है।
3: I would aspire for my country to have more development, a lot more activities for the youth. As we know that Seychelles has a problem with drugs. So I think if there was more activities for the youth, which I think slowly we can do that so that the children will stay away from that negativity.
4: I want my country to be like more populated, bigger, more advanced, like with technology and more clean, like less pollution. Seychelles had to fight a lot to gain independence, so when we celebrate it makes everybody feel proud.
5: I'm very proud my country celebrating 50 years of independence.
2: भव्य रात्रि से कुछ घंटे पूर्व ये स्वर्ण जयंती सेशल्स वासियों को याद दिलाती है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं था, एकजुटता से ही प्राप्त एक जैसी ही किस्मत।
6: सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोहों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य मेहमान है। वे आज दो दिवसीय औपचारिक दौरे पर वहां पहुंचे। उनके स्वागत के लिए सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक यामिनी हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरे के अंतर्गत भारत और सेशल्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, खासकर समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में। जैसे कि हम बता रहे थे, अटॉर्नी जनरल दफ्तर के स्तर पर कई विधेयकों पर काम किया जा रहा है। इनमें प्रोविजनल चार्ज यानी अस्थायी आरोप खत्म करना और मानव अधिकार आयोग में सुधार करना शामिल है। राष्ट्रसभा में अटॉर्नी जनरल ने वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों के पक्ष में बात की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
7: मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ भविष्य की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए कानून बनाए जाएंगे। सरकार अस्थायी आरोपों यानी प्रोविजनल चार्जेस से जुड़े मामलों पर एक नया आपराधिक न्याय विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले मौजूदा व्यवस्था के तहत लागू प्रोविजनल चार्ज समाप्त कर उनकी जगह नई प्रणाली लाई जाएगी, लेकिन इसमें अदालतों की निगरानी की व्यवस्था बरकरार रहेगी। दूसरा, गंभीर और जटिल आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए चरणबद्ध न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार किया जाएगा। और तीसरा, छोटे आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानूनी ढांचा लागू किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख सुधार मानवाधिकार आयोग से जुड़ा है। इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा ताकि ये मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने से जुड़े प्रावधान भी शामिल होंगे। क्रिमिनल कोर्ट में संशोधन सदन में पेश किए जाएंगे ताकि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान किया जा सके, जिनमें वैवाहिक बलात्कार और महिलाओं की हत्या फेमिनिसाइड शामिल है। इन सुधारों के माध्यम से कानून ये स्पष्ट करेगा कि वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार की यौन हिंसा की अनुमति नहीं देता और किसी महिला की उसके लिंग के कारण हत्या को उसी रूप में पहचाना, नामित और दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ण वेतन सहित मैटरनिटी लीव को 16 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। मॉरिशस इस कदम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उन देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहा है जो इन मानकों को पूरा करती हैं। ये आपत्ति उठाई गई है कि ऐसे सुरक्षा उपायों से नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाएंगे, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर ये है कि केवल इस संभावना के आधार पर किसी महिला को नौकरी से वंचित करना कि वह कभी माँ बन सकती है पहले से ही मॉरिशस में अवैध है। अटॉर्नी जनरल ने मासिक धर्म चक्र से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी स्पष्टता प्रदान की और मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के संदर्भ में यही सिद्धांत लागू होता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो महिला वास्तविक चिकित्सकीय कारणों से सक्षम नहीं है उसे वेतन सहित अवकाश मिलना चाहिए। ये उसे कमतर कर्मचारी नहीं बनाता बल्कि उसे कार्यस्थल पर बनाए रखने और समान अवसर देने का माध्यम है। ये व्यवस्था निश्चित रूप से उचित मेडिकल प्रमाण पत्र पर आधारित होगी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। सुधारों की सूची लंबी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन और नेशनल क्राइम

0: एजेंसी की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से वाहनों की जब्ती संबंधी प्रावधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने वाला नया कानून भी एजेंडा में शामिल है।
1: कुछ समय तक बंद रहने के बाद 22 मार्च को विश्व वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर फिर से खोला गया। आज से ये केंद्र सुचारू रूप से कार्यरत हुआ है। वहाँ एक प्रदर्शनी के जरिए प्रशिक्षित की गई महिलाओं का कार्य दिखाया गया और नए उपकरण भी बिठाए गए। देश के बुजुर्ग जीवन भर समाज के अहम सदस्य बने रहते हैं। रिटायर्ड होने के बाद ज़्यादातर बुजुर्ग ऐसे केंद्रों और संगठनों में शामिल होते हैं जहां मेल मिलाप समुदाय की भावना और अलग अलग गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। सैंपियर का ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इसी प्रकार का एक केंद्र है जो इस साल अपनी गोल्डन जुबिली यानी स्थापना के 50 साल मना रहा है। ज़्यादा जानकारी रजनी बेकर के साथ।
2: इन बुजुर्ग लोगों के लिए सक्रिय जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों तक काम करते रहे, अपने परिवार को संभालते रहे। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन में 1300 सदस्य हैं। 1974 में ये कायम हुआ। इसकी सीट सैंपिया में है। वे सप्ताह के दिन रोज यहाँ मिलते हैं और योगा करते हैं, कुछ पिताओं खेलते हैं, क्विज भी करते हैं और धर्मों एवं संस्कृतियों पर भी बात की जाती है।
3: Je suis partie de la Commission nationale du sport féminin. Me donne un cours d'exercice. Faire d'exercice pour nous aînés, c'est un plus, c'est une chose qui est bien motivant et nous trouve autres avec sourire.
4: Je me prends part devant une compétition qui est là ici, dans l'activité qu'il fait. Il détend tout en même temps. On passe un moment avec mes camarades, tout ça.
5: Nous avons envie qu'il commence à 3e âge, après qu'il y ait tant d'années de passer dans notre enfance, dans notre jeunesse, etc. Il faudrait que nous reste bien. Nous avons plusieurs activités, santé, danse, yoga, Scrabble.
2: राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने बुजुर्ग लोगों के समुदाय में व्याप्त एकजुटता की सराहना की।
6: C'est eux qui préservent nos valeurs et transmettent ces valeurs-là à la nouvelle génération. Et moi pense que nous besoin rendre hommage à tout moment.
2: 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
1: ड्रग्स का फैलाव रोकना, परिवारों को बेहतर मार्गदर्शन देना और प्रभावित लोगों की मदद करना, यही मकसद है रोकथाम, इलाज और पुनर्वास सेवाओं के लिए आयोजित प्रथम नेशनल विलाज प्रोग्राम का, जो आज रोजेल प्लाजा में लगा। सरकारी संस्थाएं, एनजीओ और एम्बुलेंस आदि के विशेषज्ञ वहां उपलब्ध सहायता सेवाओं की जानकारी देने के लिए एकत्र हुए थे। और 1986 में स्थापित यागोश के रिहाब सेंटर ने मुख्य रूप से नशीली दवाओं के इस्तेमाल को रोकने, लत से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें समाज की मुख्यधारा से में वापस लाने के वास्ते संघर्ष किया है। ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सेंटर ने लोगों की बातें सुनने और उन्हें सहारा देने और उनके जीवन को फिर से संवारने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि किसी भी लत के पीछे न सिर्फ एक परेशान व्यक्ति बल्कि अक्सर एक ऐसा परिवार भी होता है जो खुद को बेबस महसूस करता है। विदेश में वेनेजुएला में राहत कार्य जारी है, जहां गुरुवार को पेश आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 पार कर गई है। 3,300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जाते हैं, हज़ारों लोग अभी भी लापता है। और सेनेगल की उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। कल रात इराक पर शानदार जीत के बाद लायंस ऑफ टरंगा 2026 वर्ल्ड कप की दौड़ में बने हुए हैं और ये सब 5-0 की निर्णायक जीत की वजह से हुआ है। इस जीत ने तीसरे स्थान पर रहने वाली सबसे अच्छी टीमों में से एक के तौर पर राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के उनके सपने को जिंदा रखा है। फुटबॉल विश्व कप ग्रुप स्टेज के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, जहां अर्जेंटीना आसानी से क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है। वहीं पुर्तगाल और कोलंबिया टॉप स्पॉट के लिए मुकाबला करने को तैयार है। इंग्लैंड अपना काम पूरा करने की कोशिश में है और इस दौरान

लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन मुख्य भूमिका में होंगे। की खबरों के बारे या मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर कुछ जगहों में ज्यादा बारिश हो सकती है। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में। वैसे कल सूर्योदय सुबह 7:45 के लिए निर्धारित है।

0: कृषि के साथ ही समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और नीतू शाह का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। मोंटेशुलेन सुरीनाम में 70 साल की 70 इयर्स ओल्ड की श्रीमती जसवंती समन, पैदाइशी नाम जगन्नाथ, और जो प्रेम मिला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री कुमार समन के घर मोंटेशुलेन सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 गांधी रोड एनएस फ्लोहोमी, 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंदिरा बंगारीगाडू, पैदाइशी नाम रोजबेरिया नायको, और जो रेनू का नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनके घर गांधी रोड एन एस फ्लोहोम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 2:30 PM रॉयल रोड ग्रैंड रिवियर सुदेश में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद रामेश्वर जो मनन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे उनके बेटे श्री मानव रामेश्वर के घर रॉयल रोड ग्रैंड रिवियर सुदेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 9 मोंसलमान ओबन बांबूमी 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज मंगा जो कृष्ण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर मोंसलमान ओबन बांबू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंतान साहब या बांबू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: Continuous music.

0: 6:37 हो चुके हैं। नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हुए हैं आपके अपनी नई सोच के साथ, यानी कि मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ पूनम। आज ज़रा सोचिए, क्या हम सच में अपने लोगों के साथ समय बिता रहे हैं या सिर्फ एक ही रूम में बैठकर अपने अपने फ़ोन्स पर, टैबलेट्स पर, सोशल मीडिया में बिजी हैं। आज फ़ोन हमारी ज़रूरत ज़रूर बन चुका है और सभी की ज़रूरत बन चुका है। पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, मदर्स जो होती हैं बच्चों को फ़ोन पकड़ा देती हैं कि वो कार्टून्स देख लें या कोई अपना कोई कुछ भी एक ऐसी चीज़ दे देती हैं जिससे उनका एंटरटेनमेंट होता रहे, जिससे वो सीखते रहें। पर सच्चाई तो यही है कि आज ये छोटे छोटे से जो कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में होते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का यंगस्टर्स के साथ में होता है, अपना एक्सपीरियंसेस बताते थे, जैसे कि कई बार दादा दादी बताते थे हमारे समय में ऐसे होता था। शायद आज यंगस्टर्स को वो चीज़ें बुरी लगती हैं, पर एक टाइम आएगा जब आप सबको एहसास होगा कि उनकी बातें कही हुई कितनी राइट थी, कितनी करेक्ट थी, और आज उसी चीज़ को हम मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हो सके, नई सोच सिर्फ इतना ही कहती है कि अपनों के साथ थोड़ा समय बिताएं। ये बहुत ज़रूरी पल हैं, ये आपको खुशियां देंगे, ये आपकी यादें बनेंगे और यही लोग होंगे जो सबसे ज्यादा याद आएंगे।
1: RM3 Radio.

0: नई सोच। 6:42 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। और हम हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आए, जिससे आपको एहसास हो वापस वहाँ पे जाएं जहाँ पर हमने से ज़िंदगी शुरू की थी। तो कई बार ऐसा होता है फैमिली साथ बैठी होती है, सब परिवार साथ बैठा होता है, लेकिन साइलेंस ऐसा होता है जैसे सब कहीं और कहीं और बातें चल रही हैं। किसी को एहसास ही नहीं होता कि कोई बड़ा बात कर रहा है, कितनी इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी बड़े बुज़ुर्ग भी सही बात करते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत समझ होती है। और आजकल के ज़माने में तो सच में वो बहुत समझदार हैं, स्कूल में हैं, उनकी एजुकेशन बहुत हाई है और सभी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। चाहे सोशल मीडिया से ही उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर ये सच्चाई है कि जब आप अपने परिवार के अपने दोस्तों के साथ जैसे बैठते हैं, बिल्कुल हम 100% उनके साथ समय बिताते हैं, चाहे वो बड़े बुज़ुर्ग अपने सहेलियों या दोस्तों में हों या यंगस्टर्स हों अपने दोस्तों में हों, पर यही कहूँगी, पर जब आप परिवार एक साथ बैठें तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, जिससे एक बार फिर से शुरुआत हो। सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से बात शुरुआत करें, एक दूसरे से हाल पूछें, एक दूसरे से पूछें कि कैसी ज़िंदगी चल रही है, एक दूसरे की अनजानी बातों को सुनने का एहसास फिर से जगाएं। ये सबसे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत की चीज़ बन चुका है। अगर आज हम छोटी छोटी बातें एक दूसरे से पूछेंगे, जानेंगे, तो सच में हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी।
1: RM3 Radio.

हम सुन रहे थे केकी के आवाज़ में गुलों की कारोबार चले, बहुत ही प्यारा गाना रहे। और अब हम बात करते हैं फिर से एक नई सोच की। तो अभी बस प्रोग्राम दिलों की आवाज़ शुरू होने वाला है, पर हम इससे पहले ये ज़रूर कहेंगे आपको कि जब हमारे पास कभी भी कोई मैसेज आता है, ऑनलाइन मैसेज आता है, हम एकदम से रिप्लाई करते हैं, लेकिन घर वालों की बात को हम ऐसे ही टालते रहते हैं। अरे एक मिनट रुको ना, अरे अभी हम कर लेते हैं ना, हम बताते हैं ना। तो ये बहुत गलत है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है दोस्तों, बस हमें सिर्फ थोड़ा सा बैलेंस करना ज़रूरी है। कभी फ़ोन साइड में रख दो, अपने बड़ों से बात करो, अपने मम्मा पापा से बात करो, अपने छोटे भाई बहनों से बात करो। हो सकता है वो आपको एडमायर कर रहे हों अंदर ही अंदर दिल में, और वो चाहते हों कि वो आपके जैसे बनना चाहते हों, और शायद आप बहुत ही अच्छे हो। और हो सकता है कोई बड़ा आपको समझाना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो कि अब शायद मेरी वो उम्र नहीं रहेगी समझाने वाली, क्योंकि शायद आप बड़े हो गए, क्योंकि आप अपनी नज़र में बड़े हो रहे हैं। चाहे ये इस समय प्रोग्राम कोई लड़की सुन रही है, लड़का सुन रहा है, या कोई भी ऐसी उम्र में सुन रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट हम

0: इतना ही कहेंगे, कभी कभी अपने फ़ोन्स को सब साइड रख दो, टैबलेट्स को साइड रख दो, टीवी बंद कर दो, बस सिर्फ आपस में बात करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ इतना सा कर लिया ना, सच में जो खुशी आप बाहर रेस्टोरेंट्स या होटल्स में ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसी वादियों में ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको लोनलीनेस चाहिए, वहाँ पर शायद वही प्यार, वही सब कुछ आपको अपने परिवार में मिल जाए।
1: RM3 Radio.

6:55 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं हूँ आपके साथ पूनम, आप ही के प्रोग्राम नई सोच में।

बात बहुत ही प्यारी सी है। ये हमने जो प्रोग्राम शुरू किया था नई सोच, सिर्फ इसीलिए शुरू किया था कि थोड़ा सा चेंज हम सब में आ सके। तो थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर भी आइए, क्योंकि रिश्तों को नेटवर्क नहीं सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है। आप जानते हैं पति पत्नी कितने प्यार से, कितने ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से अपनी ज़िंदगी को संभालते हैं, बनाते हैं, लेकिन कई बार एक अनजान मैसेज, एक छोटी सी गलतफहमी पूरी ज़िंदगी को ऊपर नीचे कर देती है।

0: कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। जब ऐसी बातें हम अपने परिवार से सुनते हैं तो हमें दूसरों से, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से कहेंगे कि आपकी ये बात बहुत अच्छी है, ये शायद सबसे निराली है और शायद मैंने ये कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, तो यही सब दूसरे लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर परिवार वाले खुद से ये बात कहें तो शायद बहुत घरों में जितनी परेशानियां हैं वो निकल जाएं। और मैं अभी मेरे साथ ही बने रहिए, क्योंकि 7 से लेकर 9 बजे तक हम शुरू करेंगे दिलों की आवाज़, जहाँ पे पुराने गाने चलते हैं, यानी कि 60, 70, 80 के गाने चलते हैं, और स्पेशली मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले और बाकी सभी ऐसे सिंगर्स जिनकी आपको उम्मीद होती है कि हम उनके गाने चलाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त सिर्फ नई सोच से, इसके बाद भी मेरे साथ ही जुड़िएगा, इंजॉय जी आपका ये प्यारा सा गाना।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 7:07 हो चुके हैं दोस्तों, नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। शाम की खूबसूरत शुरू हो चुका है और ये सफ़र जो है बस बहुत प्यारे से गीतों और ढेर सारे एहसासों के साथ जुड़ा हुआ है। आज सुबह से कहें तो पिछले 2-3 दिन से बहुत ही यहाँ मॉरिशस में ठंड हो रही है और अपना रंग जो है पूरे उरूस पर है। और कहते हैं कि जब ऐसी ठंडक पड़ती है तो बस ऐसे टाइम में ऐसे पुराने गाने जब चलते हैं तो एहसास होता है, हाय वो दिन कितने अच्छे थे। तो अब अगर आप उन दिनों को याद करें और यादें आपकी बिल्कुल ताज़ा होने के लिए तैयार है तो मैं हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कीजिए आपके गाने और यहाँ पर मैंने शुरू किया है दिलों की आवाज़, तो आपको दिलों की आवाज़ के लिए दिल से तो दिल को जोड़ना होगा। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 5250-6200 पर, और अगर आपको कॉल करके बताना है अपने दिल का हाल तो हमें बता सकते हैं 4028070 पर।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: 7:17 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम यानी कि दिलों की आवाज़ के साथ, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यानी मैं आपके साथ और पूरी एमबीसी टीम हमारी जुड़ी हुई है। मेरा नाम है पूनम और आप सब तो जानते ही हैं कि हर सैटरडे हम आपको इसी समय मिलते हैं, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में है सबसे ज़्यादा खूबसूरत समय लगता है 60s, 70s, 80s, 90s के गानों का। बहुत ही चाहत है क्योंकि सभी के जो मैसेजेस आते हैं कहीं ना कहीं इसी पे ही इवॉल्व होते हैं, और कहते हैं कि जब इस टाइम आपके ये गाने चल रहे होते हैं, रात का टाइम हो और उस टाइम ये गाने इतने अच्छे खूबसूरत लगते हैं कि और कुछ करने का दिल नहीं करता। और साथ में यहाँ पर है तो ठंड, और ठंड में तो ऐसे गाने और भी एक्साइट कर देते हैं क्योंकि हमारे को एहसास होता है कि कितने जवान थे हम, वो कितनी यादें अच्छी थी, क्या क्या किया था हमने उस ज़माने में, हम छोटे हुआ करते थे, कभी कुछ खेलते थे, कभी कुछ खेलते थे, कभी लड़ाई करते थे भाई बहनों से, कितनी सारी बातें होती थी और आज कोई बात नहीं होती। तो अगर आपके पास भी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा वक्त है, तो थोड़े से अपने भाई बहनों को कॉल करके पूछा करो, भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो। हो सकता है कि वो नाराज़ भी हो जाए, पर होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय ललिता जी जो कि त्रियोले से हैं, ललिता कौशल जी, वो एक प्यारा सा गाना मांग रही हैं और हम बिल्कुल चलाने वाले हैं उनकी पसंद, हम ऐसे कैसे हो सकता है कि ना चलाएं। साथ में आज है हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल पोटली से रिहाना जी का बर्थडे, और हम उन्हें यही कहेंगे रिहाना जी आपको दुआ हम क्या दें, पर आपको ईश्वर परमात्मा कह सकते हैं, अल्लाह आपको हर आपकी इच्छा पूरी करे, ये यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करे, जो भी आपको चाहिए आपको वो दे। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, हमेशा खुश रहो और आपने बर्थडे वाले दिन आपने हमारे को चुना है, हमारे साथ हैं, तो इन्जॉय कीजिए आपका ये गाना।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 7:31 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम यानी कि दिलों की आवाज़ के साथ। और ये इस समय बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती आपको, पर मेरा भी दिल कर रहा है आपके साथ शेयर करने का। इस समय अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाक से हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं अपने पति राज, अंतिश, अंकुश, मनीषा, मनीष हमेशा, हिशमा, अत्या एंड अंश के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनकी बहू हैं, उनके बेटे, और वो कह रही हैं कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ पर क्या करें, बच्चे कहाँ समझते हैं। तो ये बात सच बात है, बच्चे समझते नहीं है, समझाना पड़ता है। आप प्यार देते जाओ, वो प्यार एक दिन एहसास कर ही लेंगे कि सबकी ड्यूटीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए भाई, हमारे समय साथ में इस समय फूलवंती जी जुड़ी हुई हैं जो कि इतने प्यार से, उनकी एक तो आवाज़ इतनी प्यारी है, मुझे बहुत पसंद है वो, और साथ में वो इतना प्यार से सबके लिए मैसेज करती हैं, सबके लिए प्रार्थनाएँ करती हैं, सबको कहती हैं सब हमेशा खुश रहें, और वो भी आप सबके साथ में बहुत खुश होती हैं, सबके गाने सुनती हैं और कह रही हैं एक प्यारा सा मूवी है संबंध मूवी, उसका गाना ज़रूर चलाइएगा। कहती है जब मैंने बचपन में वो मूवी देखी थी तो मुझे एहसास हुआ था कि कैसे कैसे किसी किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। एक हमारे एक और दोस्त हैं, चलिए भाई, वो बोल रहे हैं कि मैं ऑफिस से आया हूँ और इस समय बिल्कुल पानी को देख के मेरा घबराहट चढ़ रही है, पर मैं क्या करूँ, मुझे नहाना है, और बस अगर आप ये वाला गाना चला दोगे तो मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम आपके लिए क्यों नहीं चलाएंगे, चलाएंगे आपको नहलाएंगे ठंडे ठंडे पानी से।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए हो ठंडे.
2: स्पेशली ललित जी के लिए यूएसए से, जिनको ठंड लग रही है और कह रहे हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है.

0: दिलों की आवाज।
1: 7:47 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम के साथ दिलों की आवाज़ के साथ। और सच में इस समय इतना अच्छा लग रहा है, पुराने गाने सुन के ना दिल खुश हो जाता है। और इतना एहसास नहीं हुआ होगा मुकेश जी को भी नहीं जब उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड किया होगा, बट सच बात है चल अकेला। सच में इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है किसी भी रास्ते में, पर सबसे अच्छी बात यह है कि कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कोई साथी बन जाता है तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए और बस चलते चले जाना चाहिए। गाने बहुत ही प्यारे होते हैं और कभी कभी रू गाती है और कभी कभी हमारा सिर्फ गला गाता है, तो ये गाना उन्हीं में से एक है जिसमें रू ने गाया होगा और उसने कहा होगा सच में गाना बहुत ही प्यारा था। तो चलिए भाई, हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं उषा जी ब्रह्मस्थान से, जो हमेशा बहुत ही प्यारे मैसेजेस करती हैं और हमेशा खुश रहती हैं और सबको यही कहती हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि और मैं आपको उषा जी कहूँ आपका हमेशा मैसेज बहुत ही खास होता है। लिशिता भी अपने पापा के लिए गाना सुनाना चाहती है जिनका नाम है संदेश तोरुल, और मॉम कल्याणी भाई देवा दिवेश उनके लिए गाना सुनाना चाहती है और उन्हें बस इतना ही कहना चाहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बीना जी काथोबोन से जुड़ी हुई हैं और बोल रही हैं कि हम तो मेरे मान भी जाओ, क्या बात है भाई, हम तो मान गए, क्यों नहीं मानेंगे, आप सबके मैसेजेस आते हैं तो हम मान ही लेते हैं। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता कुमार। ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

0: दिलों की आवाज।
1: 8:05 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। इस समय बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सबकी पसंद के चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपकी पसंद ही इतनी प्यारी है। और इस समय कहते हैं कि हर इंसान के बाहर जो जितना दिखाता है उतना ही अंदर से थोड़ा सा कमज़ोर और टूटा होता है, कहीं ना कहीं वो इंसान अलग सा होता है। पर हम आपको कहेंगे, अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस मत कीजिए, आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं। बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इन्जॉय करें अपने गाने। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्विनल जी, जो कि इस समय हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं अपने भाई श्रवण भाभी कीर्ति अभिनव कियान एंड नव्या तुकलक फैमिली पूरी फैमिली के लिए और आंटी श्राम सरन फैमिली के लिए, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्विट्जरलैंड से और इन्जॉय कर रहे हैं गाने को। तो हम स्विनल आपको यही कहेंगे, आप बहुत जल्दी एक प्यारी सी बहू बनने वाली हैं, प्यारी सी दुल्हन बनने वाली है,

0: हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ रहेंगे हमेशा। और इस समय गुलशन जी भी जुड़े हुए हैं साथ में और कह रहे हैं सुबह 6 बजे से लेके अब तक मैं काम पर हूँ और इस समय 23 घंटे हो चुके हैं, नॉनस्टॉप मैं काम कर रहा हूँ पर थक गया हूँ, पर मुझे सिर्फ एक ही का सहारा है, वो है मेरी मामा प्रभा, सिस्टर दीक्षिता और मेरी प्यारी सी जान आयशा, जो कि मुझे हर वक्त हमेशा इतना ही कहती है अभी समय है, अभी कर लो, बाद में तो आराम से रेस्ट करना है। और सच बात है, यही अगर एक ऐसा सपोर्ट किसी को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो भोला फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं और साथ में उन्होंने बोला हमारी क्वीन आरजे हंसनी के लिए प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं आप सबके गाने।
1: RM3 Radio.

0: खेलों की आवाज
1: 8:20 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके अपने प्रोग्राम में दिलों की आवाज़ में। और ये सच बात है कि इसमें सिर्फ दिल के गाने चलते हैं, जहाँ पे भी जो आपके दिल में आता है आप हमें बताते हैं कि ये गाना आपको सुनना है, तो हम वो सब चलाते हैं। इस समय हमारे साथ भाई आबू जुड़े हुए हैं, एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक प्यारा सा गाना पोटली से जो सुन रहे हैं उनके लिए चलाने वाले हैं। रफीक मोहित तायक जी भी जुड़े हुए हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। एलिना, एलिशा, प्रिशा, सोनम, राजेश और भी इस समय हमारे साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं हम जेंजी हैं पर पुराने गानों को पसंद बहुत करते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सूरज शर्मा साजदा जी भी साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्यार सब करते हैं पर निभाता है कोई कोई, और यही कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भी हर चीज़ निभा पाता हूँ आसानी से, पर दुनिया बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और मुश्किल होती है। ज़िंदगी में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो अगर जिनकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी परेशानी है उन सब के यही कहूँगा कि सबकी परेशानी हट जाए और सब खुश रहें। और जैसे भाई अबू भी बोल रहे हैं सभी के लिए कि जितनी भी एमबीसी की टीम के सारे आरजेज हैं और सभी जो भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वैसे ही सुरेश शर्मा साजदा जी भी सबको थैंक यू बोल रहे हैं। देवानंद साहब हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारे से गाने चल रहे हैं, प्लीज़ मिलन मूवी का गाना ज़रूर चलाइएगा और हम अभी चलाएंगे। साथ में इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं, उनका

आवाज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि ये गाना सुनना चाहते हैं, तो चलिए भाई उनकी पसंद का एक गाना चलाते हैं। इंजॉय कीजिए आप सबके गाने। RM3 Radio.

0: खुशियों की आवाज।
1: 8:34 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं मेरे साथ यानी कि पूनम के साथ। और इस टाइम हो गया है भाई 8:34 मतलब 35 मिनट हो चुके हैं। और सैटरडे का दिन बहुत ही प्यारा सा दिन होता है यहाँ पर। इस टाइम कई लोगों के लिए तो वीकेंड होता है, कईयों के लिए इन्जॉयमेंट का दिन होता है, और कईयों के लिए अभी भी काम का दिन होता है। कई लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, कई लोग मॉर्निंग शिफ्ट करके थके मांदे आते हैं, पर फिर भी क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है जी, थोड़ा सा चलना पड़ता है। ना जाने ऊपर वाले ने सबकी ज़िंदगी में क्या लिखा होता है, और इतना मुझे ज़रूर पता है कि सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि एक टाइम आ गया, हम सब यही कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय भी। इस समय उमा जी हमारा साथ दे रही हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं, कह सकते हैं कि अपने लेट हस्बैंड के लिए। और वो कहती हैं कि इस गाने के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा वो जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, उनको नया जीवन मिले, हमेशा हंसते खेलते रहें। और मैं ज़िंदगी में अब दोबारा उनको कब देख पाऊँगी ये तो कभी होगा नहीं, पर फिर भी यही कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कभी सपने में आ जाएँ तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। सो स्वीट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर आज भी ऐसा प्यार मोहब्बत दिखती है, समझ में आती है, तो बहुत ही प्यारी बात है। सैल्यूट टू यू मैम, ऐसे ही बस प्यार बनाए रखिए, ना जाने कौन सपने में आ जाए आज तो बस। चलिए, साजिद जी हैं और उन्होंने आज बड़ी सी बहुत ही शैतानी वाली बात की। इतनी ठंड में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहते कि मैं ना आपको आवाज़ आ रही है क्रश क्रश की, मैंने बोला हाँ आ तो रही है, कह रही मैं आइसक्रीम खा रहा था और मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने बोला बाहर ठंड है, सब लोग वहाँ पे कांप रहे हैं और आप आइसक्रीम खा रहे हो तो गले का

0: ध्यान रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। साथ में ही निशा एंड वियंश की कल शादी है, उन्होंने भी बोला कि एक प्यारा सा गाना जरूर चलाएगा, तो हम चलाने जा रहे हैं आप सबके गाने।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज।
1: 8:50 हो चुके हैं दोस्तों। चलते चलते बस इतना ही चाहूंगी, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और छोटी छोटी खुशियों को जीना बिल्कुल मत भूलिए। मैं थी आपके साथ पूनम, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। एक लास्ट गाना जो है आप जानते हैं कि मेरी पसंद का होता है आप सबके लिए, उससे पहले एक चलेगा गाना हमारे जिनकी शादी है तो उस जोड़े के लिए, और ये गाना है प्यारा सा, लास्ट गाना है विद्वान विदेशी जी और राधा जी के लिए। इंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट।
0: RM3 रेडियो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का,
1: तड़का।
3: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी,
1: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का। रात के 9:22 और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन अभी हमनी के संगे जुड़ गल हवान, आप सब कोई के स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में जे चलेला रोज रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले। माइक पर आप सब कोई के साथ देवत हवान रत्ना, हमारे सब प्रेम नमस्कार स्वीकार कर ले जा और आशी ये आशा करब जा कि आज शाम दी के रात

तो सब कोई मजे में हवा और ढेर कोई आज हरदी में गल हवन ढेर कोई अभी मुलतो तरे बैठ के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने के शुरुआत कर दिले हवन तो चल गर्मा गर्म गीत भोजपुरी संगीत और आप सब कोई हमनी के साथ देवेश अकबर 402-808-5 पर जहां तू अपन पसंदीदा गीत के फरमाइश करे सकबा और साथ ही साथ में सास विदा करे खोजा था वो तो 5251-7005 सेकंड दे सेकोते एन स्वासन जी से हो सैक तो चला आज के बढ़िया कार्यक्रम की शुरुआत करब जाए एगो बढ़िया गीत संगे सत्यजीत रघु के आवाज में रखल आज के है पहला गीत और है फूलमतिया रानी और जे तोहर नाम रानी है तो है गीत तोहर खातिर खास करके

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम संगे चला तनी गरम गरम गीत और गरम गरम चुटकुला और जैसे जानत हवा अभी तो सब कोई सोशल मीडिया पे लगल हवा और का जानी कितना फ्रेंडशिप करत हवा और हमार चचा भी पारे हुआ आ हो हमार चचा गजोधर का बोला चलो चचा गजोधर के बतवा आगे बढ़ाए आगे हम बोल देवा भाई हाई जो अगला गीत हा हाई लीलो माथुर सुकन के बहुत मजेदार गीत शिव के महिमा और हाई गीत के पसंद कर ले हवन नवीन लक्ष्मण जी जे अभी रोज बेल से हमनी के संगीत जुड़ गल हवन चित्रा जी संगे हवन और परिवार में अब तक शादी बा सब कोई शादी के तैयारी में लग गल हवन तो चल सब कोई शादी के हाई मूड में रही और एकर संगे संगे जितना कोई तोहर परिवार हवन निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से हमेशा साथ देवलन ललिता और धनराज चरण जी हमनी के संगे जुड़ल रहलन स्वीटी संगे उनकर प्यारी बेटी राज और अमृता ओबिलक गाँव बुआ माफ करेगा न्यू ग्रोव बगल से और रमेश और प्रीति जी हवन गाँव बुआ बगल से तो चलो प्यार से साथ देते रहिए शिव के महिमा आएगी लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल और हम जैसे बोलत रहली चचा जी अभी तक जैसे देखा तैसे फेसबुक पे पूरा दिन चैटिंग करेलन स और चाची के हमर चाची हमर प्यारी चाची बिचारी के बोलेलन लेतो नहीं बाप बतियाई के बोला था तो हम बोली चचा का तू पूरा दिन चैटिंग करेला हाई सोशल मीडिया पे बोले हाँ जाना था हमार सोशल मीडिया पे 500 संगतिया हो गल हवन और जेकर में 450 तो महिला लोग से हमार दोस्ती हवन मुझे शर्म कर चचा हाई उम्र में तू महिला लोग से दोस्ती करेला चाची संगे तनी बतिया ल बोले जाने लाई जमाना जो है बदल गल बा आई जोन सोशल मीडिया पे हमार गर्लफ्रेंड है बहुत गर्लफ्रेंड बन गल बा आई जोन गर्लफ्रेंड है आई आयुर्वेदिक दवाई नियर है हम बोले का बोलत हो चचा बोले हाँ जाने ला जैसे में हाई में जैसे बहुत फायदा भी नहीं होला बहुत नुकसान भी नहीं होला हम बोले वो कैसे बोले देखा गर्लफ्रेंड रही तोहर बुढ़िया जो हो तोरा पाछे पड़ जाए तोरा देखी तोरा ताकि तोरा रंगे हाथों पकड़ ले पर हाई जन सोशल मीडिया के गर्लफ्रेंड रहेलन वो जस्ते नुकसान नहीं करेला काहे के ओकर संगे तो जस्ते खाली चैटिंग करे के बस मन खुश रहेला हाई ये हमनी के बहुत अच्छा लगेला हाई देखा चचा हाई उम्र में का लक्षण तनी शिव के ध्यान धर तनी पूजा कर हई गीतवा सुना

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम संगे सब कोई हमनी के बहुते प्यार से साथ देवत हवन त चला आज के कार्यक्रम के और बढ़िया बढ़िया बनावे खातिर जितना प्यार से हमनी के संगे सब कोई जुड़ गल हवन तनी बोलेल जाला ना कितनी स्प्रे करिया काहे के ढेर कोई हमनी के लालिन पर ढेर दिन के बाद बतियात हवन त हम भी बहुत प्यार से सब कोई के संगे बतियात हई तनी पाशांस रखिए और बहुत प्यार से चला आगे बढ़ब सा और अगला गीत जोन है संस्कृति हमारी है गीत उमा जी खातिन चलाओ अब जाओ और उमा जी हमनी के ऐजा पर साथ देवत हवन बहुत प्यार से जुड़ गल हवन फोन जू साक बगल से और उनकर सब परिवार खातिन और खास कर काल त आर्य समाज बगल से आर्य समाज फो जू साक के जितना महिला लोग हवन हवन करियन जा काहे के सत्यार्थ प्रकाश मास चलावता और चला हये अवसर पर सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना देवब जा और हई अगला गीत अभयदानंद बीजन के आवाज में रखल हई गीत करब जा तोहर खातिर और का बोलब चचा के किस्सा और कहानी हमनी के चचा बोले जिंदगी में हमेशा दूगो बात याद रखिए हम बोलनी हाँ चचा कौन बात बोले देखा जे तोरा कोनो अच्छा लगी तो अच्छा ऊ नहीं है अच्छा तू हवा अच्छा देखा उदाहरण देवा था हमनी के जे कोई अच्छा लगी तो अच्छा ओ नहीं हा अच्छा हम हई हम बोली हाँ चाचा हई तो बहुत बड़ा बात बोल देलक चाचा और जे कौनो बुरा लगी हाँ चाचा तो कौन से करे के चाहिला बुरा लगी ता बोला तो बुरा लगी तो ऊ ही बुरा होई काहे के तू तो अच्छा हवा समझ गईला ना

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सब कोई ढेर खुशी हवन अपन अपन पसंदीदा गीत सुने खातिर तो बस चला चलते रहिया और ही हमनी के साथ देते रहिया है। जब चाची शांता सुकागी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जमील फॉरेस्ट साइड से। आज उनकर बहुत तबियत ठीक नहीं बा पर फिर भी हमने के प्रोग्राम में उस साथ देवत हवन और चला उनकर खातिन सुनीता ननकू की आवाज़ में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा और उनकर प्यारी पतो किरण संगे हवन चार गो बेटा सुदेश अशोक आविन सुजीत और नाती भावेश और नातिन संजना खातिर और मजेदार गीत संगे चाची बस ऐसे हंसते रहिए प्यार से और तोहर दर्द बस यूं छू मंतर हो जाए। अरे जानत हवा है जोन पप्पू भैया है न शादी करता न शादी करे खोजत हवा और बस

फालतू के सवाल करते रहेलन चाचा के। चाचा के बोले हाँ जानत हवा चाचा, सब कोई बोले परफेक्ट पति पत्नी। एकर का मतबल है चाचा, हम शादी करे के अगाड़ी है जितना इन्फॉर्मेशन है सब जमा करब तब जाके शादी करब। तो चाचा बोले बुढ़बक लैका का बोलत हवा जाने ल, परफेक्ट जोड़ी केकरा बोलल जाला, परफेक्ट जोड़ी उ ही है जेमे पति अपन पत्नी के कबो दुख कबो परेशान नहीं देखे सकी। बोले अच्छा चाचा तो हम हये फाची के करब, हमर बुढ़िया के हम कबो दुख नहीं देवब, ओकर जितना भी दुख परेशानी रही तो हम पूरा करब। बोले हाँ तू सब कोई के दुख भगैय, और जन तोहर पत्नी रही वो पति के कबो सुख कबो सुखी नहीं देखे सकी, है ये है परफेक्ट जोड़ी। हाय चाचा काहे ऐसा बोला था वो चाची कबो तोरा सुखी नहीं देखे सकेला का।

0: भोजपुरी तड़का
1: और हिंदी फिल्म के गीत रही या भोजपुरी स्थानीय कलाकार की गीत भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत लाजवाब कार्यक्रम और मजेदार चुटकुला के संगे संगे सब कोई लोटपोट होके हंसत हवन हाइये तो जीवन है तो खुशहाली है और बस हंसते रह जिंदगी में और का चाहिए और जब तू हंसब तभी तो तहार घर बसी और खुशहाली के साथ और रौनक बढ़िया और चला मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर वाकवा से हमनी के संगे जुड़ गल हवन फूलवंती जी साथ देवत हवन बेटा उषण बेटी हवन भावना और उनकर पति हवन देवानंद और है जा पर मौत आबा बगल से आई जा पर तायक बगल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन बादवाग विदेशी जी और उनकर खास संगतिया हवन अनुषा जे मौताबा से हमनी के साथ है देवेलन तो चला उनकर खाती नगला गीत चलाओ अब जा और है जो नगला गीत हा मैंने प्यार किया काहे किया नहीं समझ में आवता साहेब सलमा काहे बोलब अभी फ्लिक ऑफ लाक बगल से अनीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और पूरा उनका जितना परिवार हवन जितना उनका संगतिया हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा शारदा सिन्हा के आवाज में रखल है बहुत ही मजेदार गीत तो चल हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और चुटकुला अभी थोड़ा घड़ी में गीत के बाद

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का 9:37 हो गल बा आउरी ठंडा का बोलता कहूं कहूं पनिया भी बरसता कहूं कहूं बहुत ठंडा मारता कहूं कहूं बहुत हवा मारता तो चला इसने मौसम बदलता आउरी मौसम जब बदलेला तब बोलल जाला ना कि कभी सर्दी खांसी बुखार चलावेला तो ऐसे में बस अपन सेहत के पूरा पूरा ख्याल रखिया जा और ही चला है जा पर मजेदार गीत के संगे संगे बहुत बढ़िया कार्यक्रम और है जो नगला गीत है लागी ना ही छूटे राम है हमर चाची ललिता के बहुत फेवरेट गीत है और संगे संगे उनका जितना परिवार हवन सब कुशल परिवार खातिन और आज अपन भैया संगे हवन भैया सुरेश भौजी हवन शोभा और ही उनका भगीना हवन प्रवेश और संगे हवन उनकर दीदी सुदेवी संगे हवन ज्ञानी साथ हवन छोटी दीदी पोलौजे से हरीश भैया भैया आत्माराम दादी प्रभावती और संगे संगे सब राम रतन परिवार खातिन और माला राम जावन खातिन तो चला सुकलाल मौसी के नहीं भुला भो सुकलाल मौसी खातिन भी है ये गीत करब जा और जानत हो लागी ना ही छूटे राम है गीत गायत्री जी भी बहुत खुशी हवन सुने के नुएल फॉन्स से वो हमेशा साथ देवेलन तो चला उनकर खातिन भी चलावब जा है ये गीत उनकर बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन उनकर भौजी शकुंतला मोताइलोंग से और उनकर खास संगतिया गीताबाई जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन नुएल फॉन्स बगल से आज उनकर प्यारी बेटी प्यारी नातिन दिया बाई के जन्मदिन है चला जन्मदिन के गीत अभी थोड़ा घड़ी में चलाओ अब जा पर से ओकर से अगाड़ी लागी ना ही छूटे राम के हई गीत चलाओ अब जा चाची ललिता कुशल खातिन हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा औरी चचा गजोधर के का बोलब अरे जाने ला अभी तो जैसे पोता सब कोई के हाथ में ऐसे चिपक गल बा कि जैसे मान ल कोनो हाथ पे ऐसे फेविकोल लगा देले होन पातेक्स लगा देले होन तो हमनी के चाचा भी ऐसे ने ह कौन दिन बाजार में भेटा गल उनकर संगतिया दमोदर तो दमोदर के नीमेगोवा ले ले लग अब दूसर दिन लगल दमोदर के टेलीफोने करे तो दमोदरवा तो टेलीफोन के नीमेगोवा देख के नहीं उठे लग काहे के कौन दिन वो प्रोग्राम देख ले रहा बोले कौनो ऐसे अनजान नंबर तोरा टेलीफोने करी तो नहीं उठाए के तो वो तो नहीं जन लग चचा गजोधर हवन तो नहीं उठाई लग टेलीफोन वा तो जाने ल चचा भी कौन ची कलन ओकरा मेसाज विदा करलन व्हाट्सएप पे बोले हाँ हौ संध्या तोहर नीमेगोवा खोजत रहलन जैसे वो मेसाज पहड़ लेलक तो आप तो लगल चचा गजोधर के टेलीफोन पे टेलीफोन करे चचा गजोधर बोले हाँ 30 हल्ला हमनी के टेलीफोने कर देले हवन हम भी टेलीफोन वा नहीं उठाइले हई का चचा का मस्करी करत हवन

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मौरी चला है जा पर दिया बाई हमनी के संगे हवन दिया बाई के आज जन्मदिन बा और बहुत बहुत प्यार से उनका प्यार या तो दादी जोन हवन गीता बाई उनका बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देवत हवन उनकर पापा हवन शिवाजी मामा हवन श्वेता बाई आतो पुपू हवन सुधा बाई और संगे हवन उनकर बहिन बिजवी बाई और छोटा भैया मल्हार और बहुत बहुत प्यार आजी गीता बाई उनकरा देवत हवन बहुत प्यार से आशीर्वाद देवत हवन और चला दिया बाई तोहरा हमर ओर से भी बहुत बहुत प्यार और बस हमेशा जीवन में आगे बढ़िए पढ़ते रहिए मामा पापा के नाम रोशन करिए और हमर ओर से तोहर खातिर हाई बढ़िया संगीत तोहरा बोलब जा हैप्पी बर्थडे।

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का उमेश दाऊ के आवाज में रखल जिले जिले और चला मजेदार कार्यक्रम संगे ढेर कोई अभी गर्मा गर्म दूध पिया थवान और वालचीन दाल के हॉर्लिक्स दाल के गर्मा गर्म सुकोला के दूध बहुत अच्छा लगेला ठंडा के मौसम में। तो चला बढ़िया गीत संगे फुलवंती जी तोर का तीन जो गीत तुम मंगले रलन गांधी जी के तीन बंदर है गीत चलावब जा तोहर खातिन और का बोलब जा चाचा चाची के किस्सा जानत हवा हमार प्यारी चाची चमेली वो हमनी के बोले कौन दिन कपार पे हाथ रख के हमनी के बोले हाँ तू सुन ले हवा हमर गांव में कौन किस्सा हो गल हम बोली नहीं चाची नहीं सुन ले हाँ तो बोले हाँ हम तो है ये सोची ला कि कैसे है जोन शादीशुदा महिला लोग हवन बाहर कैसे ओकर चक्कर चल जाला हम तो हमर घर के काम में से ही हमनी के फुर्सत नहीं मिलेला और हमर जन बुढ़वा है के तो हमर बहुते कपार में दर्द कर देले होवन हम कहाँ जाब खोजे दूसर आदमी हमनी के तो बुझाता हाउ जन फिल्म रहल ना जुदाई फिल्म याद बा ना हाउ में श्रीदेवी कैसे अपन बुढ़वा के बेच देले रहलन हमर तो मन करता हमनियों के हम अपन बूढ़ा के जाके बेच के आव हम बोली का हो चाची का बोला था वह जो फिल्म हो फिल्म में हाँ जो सच्चे के नहीं होला जीवन में।

मतलब ना हमनी के तो मन करता बेचे के ता पर हमनी के एक के को बात बहुत मन में आवेला हम बोली कौन बात बोले के कीनी है बुढ़वा के देखा ता कैसे बा कोई कीनी

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की। भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
0: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलेगो और घंटा रह गल बा और अभी 10:01 हो गल बा। 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रत्ना संगे और बस ऐसे ने साथ देते रहिया जा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर जितना कोई श्रोता लोगन जुड़ गल हवन बस तनी पास श्यांस रखिया काहे के है जन कार्यक्रम है तो हर गीत से सजावल गल बाते और ही चला है जा पर आज भाई अबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगमा फेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी उनकर खास दोस्त हवन आपी और पत्नी हवन संगे और उनकर एगो भतीजी रकीबा चला रखी बात तोहर खातिर न दुआ करत हवन मामू अबू तू जल्दी अच्छा हो जाइब स्वस्थ रहब और तोरा शिफा मिली ऐसने भाई अबू के मिसाज है तोहर खातिन और अगला गीत विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल धोती पोथी पगड़ी आई गीत तोहर खातिन चलाओ अब जा और एक चुटकुला के साथ हंसते रह काहे के हंसी जोन है वैसन एगो कलिते के दवाई है जे तोहरा खुशियाली भी देवेला तोहरा अच्छा बुझाला। और चचा चाची के किस्सा का बोलब चाची कौन दिन चचा के बोले हाँ सुना ना

हमर हमर में से हमनी के जितना आदत है ओकर आदत हमर हमर जितना आदत बा उ में से तोरा सबसे अच्छा आदत कौन चाल कौन कौन लगेला तो चाचा बोले हाँ तोहर जोन खिसियाई के आदत है हमनी के बहुत अच्छा लगेला बोले उ काहे बोले जब तू खिसिया जाला ना तो हमनी के 2-3 घंटा ले बहुत शांति मिलेला हमर मन बहुत ठंडा हो जाला

0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है हैजाबर सुदेवी जी हमने के संगे वक्वा से जुड़ गल हवन बहुत ही खुशी हवन और त्रियोले के दीदी ललिता कुशल खातिन आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना और मलेगा के सब राम रतन परिवार खातिन अगला गीत के उमांग करत हवन तो चला जरूर चलाओ अब जा क्रिएशन ओकर्स के आवाज में रखल है अगला गीत सुनीता जी के पसंद पर चलावत है गौ गोब से वो हमनी के संगीत जुड़ गल हवन और उनकर बहिन हवन विमला जी कुंगुमा से हमेशा हमनी के सुनेलन और गौ गोब से अमृता जी और गुडलैंड से वीना जी और आज है जो गीत पसंद कर ले हवन अमृता जी बोले हमनी के खाते हमनी खाते चली तनी चला द राधा के शोभेला जरूर शोभा बढ़ावब जा है गीत संगे और शोभा तो बढ़ते रहेलन चाचा और पप्पू के किस्सा और जाने ल पप्पू चाचा से कौन दिन पूछे चाचा हमनी के तनी बताओ त सबसे जस्ती खुशी इंसान के हो जे दुनिया में सबसे खुशी इंसान रहेलन चाचा बोले जाने ल बेटा जेकर बुढ़िया मायके चल जाला वो आदमी सबसे खुशहाली हो वो बहुत खुश रहेला जैसे के जवानी चढ़ गल बा तो बोले तो चाचा सबसे दुखी के हवन बोले हाँ ये आदमी के जे जान ले सांझ के बुढ़िया वापस लौटाता तो देखा कैसे मुंह उतर जाए ओकर सबसे दुखी आदमी
1: राधा के शोभेला परमान सिंदूर कृष्णा

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर शांति जी हमने के संगे जुड़ गल हवन थी अगूर से उनका सब मराठी परिवार जिदा गोचिया से साथ देवत हवन और उनकर भगीना ओम खातिन जे अप दागोजिया से हमने के हमेशा सुनते रहलन। चंद्रदेव जी बुदन के आवाज में रखा है अगला गीत उनकर खातिन चलाओ अब जा। आउरी चाचा बोले जाने ला बेटा भगवान जो है आदमी लोग के बहुत सोच समझ के बनाइले हवन। तब पप्पू भैया बोले वो कैसे चचा? बोले हाँ देख ले हवा भगवान कैसे हमनी के सकल बना देले हवन ऐसन कान ऐसन तनी बाहर निकाल के काहे काहे के जानत हवा। भगवान जानत रहलन कि हमनी के ऐसे पे कान पे ऐनक चढ़ावे के रहल और नहीं तो आदमी लोग जानत हवा कौन सी गलत। हम बोले नहीं चचा कैसे जानब? मतलब कील ठोक के एगो कुलू ठोक के पड़त चश्मा चढ़ाई के वही खातिर भगवान के बहुत अकल है समझ गई ला।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम 10:24 हो गल बा। और जितना कोई रात के काम करत हवन, गार्दी के काम करत हवन, सोफे बाबू के काम करत हवन, लोपिताल में काम करत हव, तब बस लिजिन में काम करत हव, हमनी के संगे साथ दे रहिए जा रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा रात के 11 बजे ले, और मजेदार कार्यक्रम संगे चला हईजा पर। साजिद जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन रोजेल से, और उनकर खास संगतिया हवन दीना सरोवर। जितना कोई साथ है देवत हवन उनकर खातिर विनोद सिवदत के आवाज में रखल है अगला गीत चलावब जा। और ये हमर चाची बिचारी कौन दिन बहुत परेशान हो गल, तो हम बोली चाची कौन जी होल, बोले का बोलब हमर घर में बहुत चूहा हो गल बा, मामू हो गल बा। तो हम बोली हाँ तनी दवाई डालिया, तो बोला हाँ जाने ला हम बहुत टैलेंटेड हैं। हम बोली काहे, बोला है चूहा लोग के देख के हमने के एगो गीत याद पड़ल बा। हम बोली कौन गीत, अरे अभी अभी हम लिखले हैं। अरे वाह चाची तू गीत लिखेला, बोले हाँ हाँ गीतवा सुन ले हवा, धड़कन फिल्म के गीत जन रहल, दुल्हे का सहरा सुहाना लगता है। बोले हाँ चाचा हाँ हाँ चाची सुन ले हैं, बोले हम एगो दूसर कंपोज कर ले हैं। हम बोले अरे वाह सुनावा सुनावा तने, तो चाची तो शुरू हो गल ऐसा बेसुरी आवाज में कैसे बोलब तोरा। चाची गावे के शुरू कर दिलक, चूहे का सहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, सात रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, काट देते हैं ये कपड़े बन कर के सिंघम, हर कपड़ा सिंघम से बचाना पड़ता है, कपड़ों

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:34 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़ब स और अगला गीत जोन हबसन सुपुल के आवाज में रखल दुल्हा शादी करे जाला हाय गीत चलाओ अब जा राजन लक्ष्मण जी खातन लाफलोगा से साथ देवत हवन उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना और प्रगति बहिन हवन मानती भगिनी हवन उर्मिला तुलसी और उनकर साली साहिबा आज उनकर हियाँ घूमे आल हवन तो चला हाय गीत बसंत सुपुल जी के आवाज़ में चलाओ अब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला। अगला गीत जन है शारदा सिन्हा के आवाज में रखल श्यामा जी है गीत के पांकल हवन श्यामा रघुनंदन जी हमनी के संगीत जुड़गल हवन गाँव गो बगल से उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी नम्रता केशव और युधीश संगे हवन उनकर दूगो संगतिया दूगो सखी वीना जी और वीना रामफल जी। वीना रामफल हमनी के हमेशा देहूर से साधे वेलन और वीना जी और संगे हवन विश्वानी जी हाँ हो विश्वानी जी दुमर दुखी जे कौन रिमास बगल से हमने के हमेशा साथ देवेला तो चला उनकर खातिन हाई गीतवा चलाओ। अब जा बहुत मजेदार चुटकुला संगे तो बहुत खुशी हो चुटकुला सुने की। तो चाची हमने के चाचा के बोले हाँ हम तो हर खातिन का हई तो चाचा बोले हाँ तू हमार जान हव और चाची बोले हमर कीमत का है बोले तोहर कीमत तोहर तो कीमत लाइसेंस नियर।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला अगला गीत जोन चलाओ अब जाओ और हैजा पर हमने के नीता खेदनी जी भी साथ था देवत हवन सेंशुलिया विलास से साथ देते रहिए जा मानती जी इनवल फॉन्स से जुड़ गल हवन और अगला गीत जोन संतोष महादेव के आवाज में रखल और उनकर पतो हवन उनकर बहिन हवन आरती और अनंती पतो हवन उर्वशी अनुषा संगे हवन मितिशा गिरीशा साथ देवत हवन भव्य और पुष्कर और ही हंसते हंसते श्यामा जी हईनी के हईजा हमनी के संगे एको चुटकुला शेयर कर ले हवा ना वो बोले हाँ एगो एगो दिन कढ़ाई और ही टेम्पो तनी बातचीत होवत रहा तो टेम्पो कढ़ाई के बोले हाँ तू बहुत करिया हवा इतना करिया तक कबो कोई के देख लेने हई तो कढ़ाई भी गाल बजा के जवाब दे दिलक बोले हाँ हम तो करिया हई जानी ला पर तू हमनी के देख के काहे रोज सीटी बजावेला हो

0: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: तो चला भोजपुरी दरगाह कार्यक्रम के आज के समाप्त करे के समय हो गल बा। हईजा पर हमनी के संगे प्रेम इलाज जी का तो बोन से जुड़ गल हवन और अपन पति के बहुत याद करत हवन। तीन गो बेटी संगे हवन बेटा, दुगो नाती और दुगो नाती जे हवन लोंग लेते हमें। और बस हये प्रार्थना करत हवन कि भगवान जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई के भगवान शक्ति दे। चला प्रेमिला जी तोहर आशीर्वाद सब पर बनल रही ऐसे आशा करब जा। और चला इसी के संगे संगे सीता जी हैजा पर माफ करे जा कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन दागो जे बगल से। जी हाँ कुमारी जी हमनी के बोले उस्ताबिया परिवार खातिन अगला गीत चला द। संगे हवन उनका तीन गो बेटी लता प्रतिमा सुधा और पतो हवन कामिनी। संगे हवन उनका नाती आयुष, सात गो बहिन, तीन गो समधीन और सब परिवार खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत। और हई ये गीत रही हमनी के आज के कार्यक्रम के आखिरी गीत। शोभा जी हमनी के कथोबोन से बतियात रलन। और शोभा जी तोहर उठाता जैसे फोन वा कटागल जैसी लंबा बात नहीं करे सकली, पर कोई बात नहीं तोहर नाम जोड़ है शोभा जी तोहर सब परिवार खातिन। और अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अयोध्या के राज है गीत। ये गीत के संगे संगे आज के कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए। अगले शांति के फिर उसे भेंट आप सब ने रात के 9 बजे से रात के 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। और चला हमनी के बाद रात के 11 बजे से 12 बजे ले सुनहरे पल कार्यक्रम तू सुने सकब। नीतू शाह के प्रस्तुति में है अगला कार्यक्रम रही जहाँ पर पुराना गीत तू सुने सकब। तो चला इसी के साथ एगो बढ़िया सामदी एगो बढ़िया दिमास अपन परिवार संगे बितैया। जेकर शादी जेकर हरदी आज बाते काल शादी हो बहुत बहुत शुभकामना देव थे। और फेरों से बेटा आप सब एगो बढ़िया सप्ताह के साथ तबले अपन ख्याल रखिए और ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीते रहिए। अपन सेहत के पूरा ख्याल रखिए। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्ते आप सभी को।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए एक घंटे के सफर में हमारे हम सफर बने रहिए। और आज सुनहरे पल कार्यक्रम एक ऐसी कलाकारा के नाम करते हैं। आज तो एक पॉलिटिशियन है, लेकिन 60s-70s में इतने प्यारे प्यारे मूवीज में काम किया और इतने प्यारे प्यारे गाने हैं। पहला गाना सुनिए, आपको पता चल जाएगा किसके बारे में हम बात कर रहे हैं।

हाँ श्रोताओ, आपने अंदाजा लगा ही लिया कि आज मिसेस बच्चन यानी कि जया बच्चन की बात कर रही है। वैसे हिंदी सिनेमा की उन अदाकारों में से एक है जिन्होंने अपनी सादगी, प्रतिभा और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनका जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि कला और अभिनय में रही। उन्होंने पुणे के प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII से एक्टिंग की पढ़ाई की और वहां से गोल्ड मेडल के साथ पास हुई, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण था।

0: बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। उनकी पहली महत्वपूर्ण फिल्म गुड्डी थी, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई। इस फिल्म में उन्होंने एक सरल और सपने देखने वाली लड़की का किरदार निभाया, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आया। गुड्डी की सफलता ने जया बच्चन को बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों की श्रेणी में ले खड़ा किया।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ

0: 1970s के दशक में जया बच्चन ने कई यादगार फिल्मों में काम किया श्रोताओं, अभिमान, कोशिश, मिली, चुपके चुपके, अनामिका, जंजीर, शोले जैसे फिल्मों में अपने अभिनय को आज भी याद किया, उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। उनके एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे अपने किरदार को बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जीती थी। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और सरल अंदाज दर्शकों को उनसे जोड़ देता था। वे बिना अधिक नाटकीयपन के अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाती थी कि हर पात्र जीवन लगने लगता था।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ

फिल्म अभिमान में उन्होंने अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वैसे एक और मूवी रही एक नजर, जिसमें इन दोनों की नजरें मिली और तभी से प्यार शुरू हो गया था। वास्तविक जीवन में भी जया और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित दाम्पतियों में से गिने जाते हैं। उनकी शादी 1973 में हुई और तब से दोनों भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं।

जया बच्चन को अपने करियर में अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कई बार फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते और भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित की गई। उनका नाम उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने महिला प्रधान फिल्मों को एक नई पहचान दी। उनके अभिनय में गहराई, संवेदनशीलता और सच्चाई नजर आती है, जो उन्हें अन्य कलाकार

लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद भी जया बच्चन ने जब वापसी की तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। 2000 के सालों में 1400

चौरासी की माँ फिजा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। हर दौर में उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता।

0: अभिनय के साथ साथ जया बच्चन ने राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और निश्चित राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं। जया बच्चन की विरासत सिर्फ उनके फिल्मों तक सीमित नहीं है, वे भारतीय नारी की गरिमा, सादगी और शक्ति का प्रतीक हैं। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी दिखावे के भी एक कलाकार अपनी कला के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। आज भी उनका नाम बड़े अदब सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी फिल्में नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। जया बच्चन सचमुच भारतीय सिनेमा की एक अनमोल धरोहर है, जिनकी कला और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।